सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948, वैशाख माह की तिथि 18, तदनुसार 8 मई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे

0: निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh held bilateral talks with his Vietnamese counterpart Dr. Bu Hai Huang in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems, and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries,

राम ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों का गाया श्री रामचरित मानस गान, और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों में कुछ भक्ति गीत। तो सबसे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, और लीजिए प्रस्तुत है ये भक्ति गीत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये भक्ति गीत, और अब आइए सुनते हैं मन्ना डे के स्वर में।

मना डेके स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चाइबासा केंद्र है।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं और अब श्रोताओं आइए आपको बता दें आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे सुभाषिस मित्रा और 7:00 समय होगा जोहार चाईबासा का, जिसमें आप फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 पर। 8:40 पर हमारा लोकगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे माटी की महक में कुर्माली लोकगीत कुमकुम महतो और साथियों से। सुबह 9:00 प्रसारित करेंगे कार्यक्रम विविधा। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन और 10:00 प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, कलाकार है सुभाषिस मित्रा।

सुभाषिस मित्रा के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है और जोहार चायबासा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले हम सबसे पहले आज के सुविचार जान लें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से शुरू होती है। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है, उसका हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। उगता हुआ सूरज हमें यह संदेश देता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे समाप्त कर ही देती है। तो इसी सुविचार के साथ श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारा जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम। सुबह की इस सुनहरी बेला में जोहार चायबासा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, तो जीवन के हर गीत में मिठास अपने आप घुल जाते हैं। तो योग की सकारात्मक ऊर्जा और फिल्मी गीतों की इस सुरीली दुनिया के साथ शुरू करते हैं हमारा जोहार चायबासा कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा सफ़र।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आज और कल का ये प्यारा सा गीत रवि के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी का गाया। और अब श्रोताओं, हम कार्यक्रम में और एक बहुत प्यारा सा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है ममता। आशा और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में सुनते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत रोशन लाल के धुन पर।

दोस्तों, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि यह मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाने की कला भी है। अगर प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट प्राणायाम और ध्यान करने से हमारा तनाव कम हो जाता है तो हमें इसे जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें दिन भर ऊर्जा मिलती है। और मुस्कुराना तो भूलिए ही मत दोस्तों, क्योंकि मुस्कुराहट भी एक हमारे लिए बेहतरीन योग है। और सुनिए हमारा ये प्यारा सा गीत।

0: शिमारू के नए वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
1: हिंसा से सही राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा गया। आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार।
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे भक्तो था तो घर आए में हमारे घर बहुत दुख के बात होते हम बात हो जाए है।
6: नितुम बुरन सिंह तामसोय अनिता तामसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा में रिया तपा में रिया वा बेटा मिटा
7: अन्य नितुम दो बुम्बई कोड़ा
5: ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞ

0: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: विजयलक्ष्मी जी, आपका
2: श्रोताओं, इस अपील के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं जोहार चायबासा का कार्यक्रम। और श्रोताओं, जोहार चायबासा कार्यक्रम में गीतों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं योग और स्वास्थ्य पर भी। जब योग की बात हो और सूर्य नमस्कार का नाम ना आए तो श्रोताओं, ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य नमस्कार हमें हमारे शरीर को लचीला बनाता है और हमें पूरे दिन ऊर्जा से भर देता है। सुबह का सूरज हमें यह संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत, जानिशार अख्तर का लिखा, जयदेव के धुन पर लता मंगेशकर का गाया। आप सुन रहे हैं हमारे आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से जोहार चाईबासा का कार्यक्रम। श्रोताओं, पर्याप्त पानी पीना भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान मंत्र है। दिन भर में कम से कम 7-8 गिलास पानी जरूर पिए। पानी शरीर को ही नहीं मन को भी तरोताजा रखता है। और सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर का गाया, अनजान का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया, जावेद अख्तर का लिखा, अनु मल्लिक के धुन पर फिल्म बॉर्डर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे जोहार चाईबासा कार्यक्रम में ये प्यारे से गीत। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज बहुत जरूरी हो गया है। अपने लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए, ध्यान दीजिए, संगीत सुनिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए। संगीत हमारे आत्मा को सुकून पहुंचाता है और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, साहिल लुधियानवी का लिखा, खयाम के धुन पर ये प्यारा सा गीत फिल्म कभी कभी से। और हमारे जोहार चायबासा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार का गाया राजेश रोशन के धुन पर फिल्म टेलीफोन का ये गीत। और श्रोताओं, हमारे आज के जोहार चायबसा कार्यक्रम के सुरीले सफर में आपने जाना योग, हंसी, संगीत और सकारात्मक सोच। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और इसी शुभकामना के साथ आज का जोहार चायबसा का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चायबसा केंद्र से बोल रहे हैं और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाश समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति

0: लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई

0: समिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अपने क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी

0: दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain

0: पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने तथा हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में आयकर विभाग ने निर्धारित 18,500 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार करते हुए 20,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया है। इसमें झारखंड से 12,000 करोड़ और बिहार से 8,000 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड के व्यक्तिगत करदाताओं में सबसे बड़े आयकरदाता बने हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने देवघर में विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और पुनासी परियोजना समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस मौके पर हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए।
2: सभी विभागों को बहुत ही गहनता के साथ हम लोगों ने समीक्षा किया है और जो डायरेक्शन देना था उचित, जो जनहित के लिए, वो डायरेक्शन हम लोग दे दिए हैं और उसको टाइम टेबल वगैरह फिक्स किया है। इतना दिन के अंदर उसको पूरा कर लेना है, यही आज की मीटिंग है।
0: रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलखो ने जनगणना 2027 के तहत मोबाइल फोन के माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की स्वगणना की। उन्होंने बताया कि जनगणना का पहला चरण 1 से 15 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक वेबसाइट सेंसस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर यूनिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में रजिया नदी पर सौर्य ऊर्जा संचालित उद्धव सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने किया। इस योजना के तहत नदी का पानी लिफ्ट कर सैकड़ों एकड़ भूमि तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।
3: निवासियों का जो गांव मंडल का जो गांव है, यादव का जो गांव है, वो नदी से ऊपर है और यहाँ पर अगर आप लिफ्ट इरिगेशन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, आदिवासियों को लाभ मिलेगा। ये रजिया नदी पर सिलदवा पंचायत है, हमारा गाँव है, पंचायत में

0: ने बहुत बड़ा लिफ्ट इरीगेशन दिया है, यहाँ के लोग अब नदी से पानी उठाएंगे और अपने खेतों तक पहुँचाएंगे।
1: रांची यातायात पुलिस ने शहर में बिना वैध दस्तावेज और क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने वाले बस, ऑटो और टोटो वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। चलाए गए अभियान के दौरान कुल 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें 3 बस, 103 ऑटो और 5 टोटो वाहन शामिल हैं। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और मालिकों से वैध कागजात रखने तथा निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाकर वाहन चलाने की अपील की है। झारखंड में अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस को हाई स्पीड बाइक दी जा रही है। इस कड़ी में हजारीबाग पुलिस को 42 नई बाइक मिली है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि ये बाइक संकीर्ण गलियों और मोहल्लों में तेज पेट्रोलिंग तथा अपराधियों का पीछा करने में मददगार साबित होगी।
2: झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे, 42 बाइक नए आए थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को और जहां पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहां के थानों को, ताकि वहां पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सके। स्पॉट्स को हम लोग कवर करें जहां अड्डेबाजी होती है, जहां परेशानी होती है, जहां आम नागरिक ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, वहां पर बाइक्स की पेट्रोलिंग हम लोग करें।
1: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जांच अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब्त मादक पदार्थ को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। मौसम। झारखंड में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से आज से 13 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत कई जिलों में 9 और 10 मई को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। ताइक्वांडो। रांची में कल से 12वीं रांची जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले भर से करीब 600 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और रेफरी विभिन्न स्कूल, कॉलेजों और क्लबों की ओर से भाग लेंगे। प्रतियोगिता के पहले दिन सब जूनियर और जूनियर वर्ग, जबकि दूसरे दिन कैडेट और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। चयनित खिलाड़ी वर्ष भर जिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने बिहार में हुए 32 मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, पश्चिम बंगाल में आज होगी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, तैराकी प्रतिभाओं को उपलब्ध कराई जाएगी अत्याधुनिक सुविधा। हिंदुस्तान ने लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाक के खिलाफ अभियान पर सेनाओं ने किया खुलासा, 100 आतंकी मारे गए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को झारखंड में निबंधन से मिलेगी छूट। और अंत में मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 50% आरक्षित पदों पर पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन शुरू, झारखंड को मिलेगा 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का लाभ। संथाल परगना समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति होगी मजबूत। झारखंड बिहार में आयकर विभाग ने 20,000 करोड़ रूपये का कर किया संग्रह, महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। और रांची में कल से आयोजित होगी 12वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता, 600 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: मीडियम वेव
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, कार्यक्रम माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं कुरमाले लोकगीत। कलाकार हैं कुमकुम महतो और उनके साथी।

लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे कुमकुम महतो और साथियों को। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और श्रोताओं लेकर हाजिर हूँ मैं कार्यक्रम विविधा। कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर और विश्व थैलेसीमिया दिवस पर। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। आज 8 मई का दिन पूरी दुनिया में एक ऐसे संगठन को समर्पित है श्रोताओं, जिसने युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी, भूखमरी और संकट के समय मानवता की सेवा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह दिन है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रोसेंट डे, अर्थात विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसी दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था। मानवता की सेवा और पीड़ितों की सहायता के लिए उन्हें पहला नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। दोस्तों, मानव जीवन में संकट कभी भी आ सकता है। कहीं युद्ध, कहीं भूकंप, कहीं महामारी, तो कहीं बाढ़ और सूखा। ऐसे समय में जब लोग असहाय हो जाते हैं, तब कुछ संगठन मानवता की सेवा में आगे आते हैं। रेड क्रॉस एक ऐसा ही विश्वव्यापी संगठन है जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह संदेश देता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो वह हमारी सच्ची पूजा होगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1948 में हुई थी। इसी दिन को मनाने के उद्देश्य से लोगों में मानव सेवा की भावना को बढ़ाना और रेड क्रॉस संगठन के कार्यों के प्रति जागरूकता को फैलाना है। यह दिवस रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनेंट की स्मृति में मनाया जाता है। श्रोताओं, उनका जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। हेनरी डुनेंट एक व्यापारी थे, लेकिन उनका हृदय मानवता के लिए धड़कता था। वर्ष 1859 में उन्होंने बैटल ऑफ सोलफेरिनो का भयानक दृश्य देखा था। हजारों सैनिक घायल होकर तड़प रहे थे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। यह दृश्य देखकर डुनेंट बहुत विचलित हुए। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों की सेवा शुरू की। बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो। इस पुस्तक में उन्होंने युद्ध के समय घायलों की सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने का सुझाव पेश किया और इसी विचार से रेड क्रॉस आंदोलन की नींव पड़ी। वर्ष 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की गई। बाद में यह आंदोलन हमारे पूरी दुनिया में फैल गया। आज रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन दुनिया के लगभग हर देश में कार्य कर रहा है। इस संगठन का प्रतीक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग का क्रॉस है, जो सहायता, सेवा और मानवता का प्रतीक माना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य श्रोताओं, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है आपदा राहत कार्य, जिसमें भूकंप, तूफान, बाढ़, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत पहुंचाना है। युद्ध पीड़ितों की सहायता करना है। युद्ध और संघर्ष के समय घायल सैनिकों तथा नागरिकों की सहायता करना इनका मुख्य काम है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जैसे रक्तदान शिविर, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को चलाना। जाति, धर्म, भाषा और देश के भेदभाव से ऊपर उठकर सेवा करना रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं को सेवा, प्राथमिक उपचार और सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।

रेड क्रॉस संगठन के 7 मूल सिद्धांत हैं श्रोताओं, मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में की गई थी। भारत में यह संस्था कई महत्वपूर्ण कार्य करती है दोस्तों, जैसे रक्तदान शिविर लगाना, एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देना, आपदा राहत कार्य करना, गरीबों की स्वास्थ्य सहायता करना। कोविड महामारी में तो इनकी कार्य बहुत ही सराहनीय रही। आज देश के लगभग सभी राज्यों, सभी जिलों में रेड क्रॉस की शाखाएं काम कर रही है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो रेड क्रॉस सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाले संगठनों में शामिल होता है। बाढ़ के समय भोजन और पानी उपलब्ध कराता है, दवाइयाँ पहुंचाता है, अस्थायी शिविर लगाकर लोगों की सहायता भी करता है। भूकंप के समय घायलों का उपचार करता है, राहत सामग्री वितरित करता है और बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान रेड क्रॉस ने मास्क का वितरण किया श्रोताओं, ऑक्सीजन सहायता प्रदान किया, जागरूकता अभियान चलाया और वैक्सीनेशन सहयोग के लिए बहुत सारे कार्य किए। रेड क्रॉस रक्तदान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान देता है दोस्तों। रक्तदान महादान का संदेश आज समाज तक पहुंचाने में रेड क्रॉस की बहुत बड़ी भूमिका है। एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है, इसलिए युवाओं को नियमित रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है। आज युवा यदि चाहे तो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रेड क्रॉस युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देता है, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक सेवा से जोड़ता है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जूनियर रेड क्रॉस तथा यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा भावना प्रदान की जाती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2000 आज के समय में दुनिया में अनेक चुनौतियों का सामना विश्व रेड क्रॉस दिवस कर रही है श्रोताओं, जैसे कि युद्ध, जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी और भूख। ऐसे समय में रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता की उम्मीद बनकर लोगों के सामने आती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें सिखाता है कि मानव सेवा ही सच्ची देशभक्ति और सच्चा धर्म है। इस दिवस ने से हमें कई सीख मिलती है, जैसे कि धर्म, जाति और भाषा से पहले इंसानियत, मानवता सबसे ऊपर है। जरूरतमंद की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। रक्तदान जीवन बचाने का सबसे सरल माध्यम है। संकट के समय समाज को एकजुट होकर कार्य करने के समय यही हमारी सच्ची सेवा है। स्वस्थ समाज के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य कार्य है। आज रेड क्रॉस आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर रहा है, जैसे कि मोबाइल हेल्थ सेवाएं, डिजिटल हेल्पलाइन, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, ऑनलाइन रक्तदान पंजीकरण। इससे सहायता कार्य में और भी तेजी आई है श्रोताओं। किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, रक्तदान करना, भूखे को भोजन देना या संकट में किसी का हाथ थाम लेना, हमारे लिए यही सच्ची मानवता है। रेड क्रॉस दिवस केवल हमारे लिए एक आयोजन ही नहीं दोस्तों, बल्कि मानवता की सेवा का एक संकल्प है। न जाति का भेद, न धर्म की दीवार, मानव सेवा ही सबसे बड़ा उपकार। आज इस विश्व रेड क्रॉस दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, मानवता और सेवा

0: की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यदि हर किसी जरूरतमंद की मदद करें तो दुनिया में दुख बहुत कम हो सकता है। तो श्रोताओं, हम अभी बात कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े
1: भारतीय सेना।
2: और इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा, और कार्यक्रम विविधा में श्रोताओं, आज के महत्वपूर्ण दिवस पर हम बात कर रहे हैं। आज और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस स्वस्थ जीवन का अधिकार, हर थैलेसीमिया रोगी के सम्मान पर श्रोताओं यह मनाया जाता है। आज हम एक ऐसे गंभीर स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लाखों बच्चों और परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ है। विषय है विश्व थैलेसीमिया डे। यह प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को थैलेसीमिया रोग के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच के महत्व को बताना तथा रोगियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना है। स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कई बार कुछ बीमारियां जन्म से ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर देती है। थैलेसीमिया ऐसे ही एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी है दोस्तों। यह रोग केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसलिए जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य श्रोताओं, थैलेसीमिया के प्रति लोगों को जागरूक करना, रोगियों को बेहतर उपचार दिलवाना, रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, विवाह से पहले जांच को बढ़ावा देना है। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि थैलेसीमिया है क्या। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त रोग है। इसे शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनने लगता है, तब रोगी को बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। यह रोग माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक रूप से आ जाता है। यदि माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए विवाह से पहले थैलेसीमिया जांच बहुत ही आवश्यक मानी जाती है। थैलेसीमिया के कई प्रकार होते हैं। थैलेसीमिया माइनर, जिसमें व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है, अक्सर कोई गंभीर समस्या नहीं होती है, लेकिन यह रोग का वाहक होता है, इससे रोग फैलता है। थैलेसीमिया मेजर, यह गंभीर अवस्था होती है। रोगी को नियमित रूप से रक्त चढ़ाना पड़ता है। बच्चों में कमजोरी और विकास रुक सकता है। थैलेसीमिया में लोगों को इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बहुत ही अधिक कमजोरी लगना, शरीर में पीलापन, जल्दी थक जाना, बच्चों की वृद्धि रुकना, सांस लेने में तकलीफ होना, चेहरा पीला पड़ना, बार बार बुखार आना। यदि किसी बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई देते हो, हमें तुरंत जांच करानी चाहिए दोस्तों। थैलेसीमिया की पहचान रक्त जांच द्वारा की जाती है, जैसे कि CBC टेस्ट, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट। इसके समय पर जांच से इस रोग का पता लगाया जा सकता है। थैलेसीमिया से बचाव जांच के बाद काफी हद तक संभव है। इसके बचाव के कुछ मुख्य उपाय हैं, जैसे विवाह से पहले जांच। यदि लड़का लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उन्हें उचित चिकित्सीय सलाह देनी चाहिए। समय पर जांच से बच्चे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। थैलेसीमिया मेजर रोगियों को नियमित उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे रोगी को हर कुछ सप्ताह में रक्त चढ़ाना पड़ सकता है। बार बार

0: थैलेसीमिया एक चिकित्सा का ही विषय नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमें चाहिए कि रोगियों के प्रति सहानुभूति रखें, रक्तदान करें, जागरूकता फैलाएं और भेदभाव न करें। युवा वर्ग समाज में जागरूकता फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जैसे कि रक्तदान शिविर आयोजित करके सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाकर लोगों को जांच के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भारत में हर वर्ष हजारों बच्चे थैलेसीमिया के साथ जन्म लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में लोग थैलेसीमिया माइनर हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए जन जागरूकता अभियान बहुत ही जरूरी है। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मुफ्त जांच, रक्त बैंक की सुविधा, उपचार सहायता, जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है। तो श्रोताओं, इस बीमारी से लड़ने के लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि समाज का सहयोग और संवेदनशीलता ही बहुत आवश्यक है। थैलेसीमिया रोगियों को दवा नहीं बल्कि सम्मान और सहयोग की आवश्यकता है। किसी के जीवन में आशा का दीप जलाइए, रक्तदान कर मानवता का धर्म अपनाइए। इसलिए आज के इस विश्व थैलेसीमिया दिवस पर हम संकल्प लें कि नियमित रक्तदान करेंगे, विवाह पूर्व जांच के प्रति जागरूकता फैलाएंगे, थैलेसीमिया रोगियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, जागरूकता ही बचाव है और रक्तदान ही जीवन दान है। इसी के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस पर हम ये सभी बातें प्रण करें।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: मोर नाम मंगल राय को गाँव बारीगड़ा आड़की थाना। तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम।

गांव बारीगड़ा आणकी थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बंदा है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म नाम का ये गीत।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: देखा।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: और इन संदेशों के बाद श्रोताओं, चलते हैं फिर से अपने कार्यक्रम की ओर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन में ये फिल्मी गीत।

बापू छेला, बापू छेला, मैं बापू छेला।

श्रोताओं, आपने अभी सुना किशोर कुमार का गाया ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन में ये फिल्मी गीत। और अब अगला गीत हमने लिया है कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया फिल्म गुनाह से।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है हनुमानगढ़ फाजिल्का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने। लिखते हैं,
2: समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार भेजा आपने। जी हाँ, इसी विचार पर अंग्रेजी की कुछ और पंक्तियाँ सुनिए।
2: यू मे बी माइटी बट द टाइम इज माइटियर, टाइम कैन मेक द माइटी वीक एंड द वीक माइटी, सो बी हम्बल।
1: बहुत सुंदर विचार है और कितनी अच्छी बात कही गई, सो बी हम्बल। और जेएल रोड डोंडी से राधिका जयपुरिया, रोशन और प्रभा डोमीन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके नायाब संदेशों के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के एक महानतम शासक के बारे में।
2: इन सम्राटों ने राजनीति, शासन प्रबंध, संस्कृति और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो अजीत जी, आज हम किस सम्राट की बात करेंगे, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक की, जिन्हें भारत के महानतम सम्राटों में से एक गिना जाता है। उनका गहरा प्रभाव आज भी हमारे भारत के चिंतन पर दिखाई देता है।
2: जी अजीत जी, आपने सही कहा। सम्राट अशोक का जीवन सिर्फ विजय और साम्राज्य के विस्तार तक ही सीमित नहीं रहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वे कालांतर में क्रूर योद्धा और विजेता से करुणामय, न्यायप्रिय और धर्मप्रिय शासक के रूप में भी जाने जाने लगे।
1: जी विमलेश जी, ऐसी घटना भारत तो क्या विश्व इतिहास में भी अद्वितीय है। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही वे बहुत साहसी, प्रखर, तेजस्वी और युद्ध कला में पारंगत थे।
2: अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा कि उनके दादा महाप्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने महान राजनीतिज्ञ चाणक्य के संरक्षण और निर्देशन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।
1: उनके पिता बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजा बने और इस काल में उन्होंने अपने पुत्र अशोक को राज्य के विभिन्न प्रांतों में राज्यपाल बनाकर भेजा।
2: राज्यपाल बनकर अलग अलग प्रांतों में काम करने के कारण अशोक का शासकीय अनुभव बहुत बढ़ गया था और उनके सम्राट बनने के बाद बहुत काम आया।
1: राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक गद्दी पर बैठे। शुरुआत में वे बहुत कठोर और निर्दयी शासक माने जाते थे, इसलिए उन्हें चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है।
2: जी,
1: लेकिन जिस अशोक की क्रूरता के लिए उन्हें चंडाशोक कहा गया है,
2: इतिहास गवाह है कि उनके मन परिवर्तन के बाद उनकी दयालुता के कारण उन्हें देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाने लगा। उन्होंने अपना साम्राज्य का क्षेत्र बहुत बढ़ाया, पाटलिपुत्र से आज के अफगानिस्तान से कंधार तक। मौर्य साम्राज्य उन दिनों का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था। फिर हुआ उनका ओडिशा का अभियान, जो उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था।
1: हम सभी उड़ीसा के प्रसिद्ध युद्ध कलिंग के बारे में जानते हैं।
2: जी,
1: ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ और लाखों लोग मारे गए।
2: इसी युद्ध के दौरान सम्राट अशोक का संवाद कलिंग की राजकुमारी के साथ हुआ, जिसने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। युद्ध में हुए भयानक विनाश को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया।
1: बाद में उन्होंने अहिंसा, करुणा और सत्य को शासन का आधार बनाया। उनके शासन के आदर्श थे अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान, माता पिता और गुरुजनों का आदर और पशुओं के प्रति करुणा।
2: अपने शासनकाल में उन्होंने अपने सहिष्णु विचारों के प्रचार के लिए बहुत से शिलालेख और स्तंभ खुदवाए, जो आज तक देखे जा सकते हैं।
1: उन्हें विश्व इतिहास में पहले कल्याणकारी शासकों में से एक माना जाता है।
2: सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ का स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देखा जा सकता है। आज हम विस्तार से इस पर कार्यक्रम भी सुनेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक कहाँ के स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक कहाँ के स्तंभ से लिया गया है।
1: श्रोताओं, आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: LinkedIn, X, Facebook और Insta पर भी

0: आप सीआईटी एनसीईआरटी को जरूर फॉलो कीजिए और हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताजा जानकारी प्राप्त कीजिए।
1: तो आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
0: ये कार्यक्रम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जेल डायरी के कुछ अंश हैं। इस डायरी में उन्होंने बताया है कि उनके देशभक्त बनने और चरित्र निर्माण में उनकी माताजी की कितनी बड़ी भूमिका थी।
1: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: रामप्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

0: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहाँ हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर

0: पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
1: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादी में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
2: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए।
3: जी सर।
2: जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका।

तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्ज्वल अक्षर

0: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
1: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम मेरी माँ। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और बाबला कोचर, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जेल डायरी के अंशों का ये मार्मिक नाट्य रूपांतर। अब सुनते हैं कार्यक्रम सम्राट अशोक। इनके बारे में अभी अभी हमने सुना था, श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: ये कार्यक्रम महान सम्राट अशोक के जीवन, राज्य, प्रशासनिक कार्यों और अंततः कलिंग के युद्ध में उनके शस्त्र त्याग के बारे में एक नाटक के द्वारा विस्तृत जानकारी देता है।

0: भारत के इतिहास में महाराज अशोक का नाम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक बार अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा ताकि वहां फैली विद्रोह की चिंगारी को बुझाया जा सके। महाराज अशोक अपने पिता बिंदुसार के छोटे पुत्र थे, किंतु बहादुर और वीर इतने कि अपने बड़े भाई सुसीम को पीछे छोड़ दिया था।
1: महाराज बिंदुसार की जय। महाराज बिंदुसार
2: अमर रहे।
3: महामंत्री, तक्षशिला के क्या समाचार हैं?
4: महाराज, आपकी कृपा से तक्षशिला में विद्रोह शांत हो गया। कुमार अशोक ने चमत्कार कर दिखाया।
3: चमत्कार? कैसा चमत्कार?
4: विद्रोहियों ने जैसे ही सुना कि राजकुमार अशोक सेना लेकर आ रहे हैं, वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हथियार डाल दिया महाराज।
3: आश्चर्य है महामंत्री, मेरा बड़ा पुत्र सुसीम विद्रोह दबाने में असफल रहा था। सचमुच वीर और चतुर है अशोक।
4: जी हाँ महाराज, इसीलिए मगध की जनता राजकुमार अशोक से स्नेह करती है। आप देखिए ना, उज्जैनी का शासन कितनी कुशलता पूर्वक चला रहे हैं।
3: हाँ, सो तो है, किंतु
4: महाराज

0: वैद्यराज आप विश्राम करें, मैं अभी वैद्यराज को बुलवाता हूँ।
1: महामंत्री, राज वैद्य क्या करेंगे, शरीर बूढ़ा हो रहा है, अंग अंग में थकान भर गई है।

0: तो मृत्यु में ही विश्राम मिलेगा।
1: महाराज ऐसी अशुभ बातें क्यों बोलते हैं? आप सैकड़ों वर्ष जिएंगे।
0: सैकड़ों वर्ष, खैर छोड़ो ये बात। मैं सोचता हूं अब राजपथ के उत्तराधिकारी की घोषणा कर देनी चाहिए।
1: जी महाराज, मैं वही तो कह रहा था, कुमार अशोक हर प्रकार से योग्य है।
0: मानता हूं, किंतु सुसीम अशोक से बड़ा है और यही परंपरा है कि बड़ा बेटा ही पिता का स्थान लेता है। जाओ जाओ, तैयारी करो, सुसीम के विषय में घोषणा करूंगा।
1: परंतु महाराज

0: कुछ भी हो मगध के सिंहासन का सच्चा अधिकारी तो अशोक है।
1: अरे पर राजा तो सुसीम बनेगा।
0: मगध की जनता अशोक को नए राजा के रूप में देखना चाहती है क्योंकि अशोक महान है।

0: मंत्री, अशोक आप सबका आभारी है।
1: महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि आपने मगध के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाई है।
0: पर पिताजी तो मुझे राज सिंहासन देना नहीं चाहते थे।
1: स्वर्गीय बड़े महाराज परंपराओं से बंधे थे। ये तो आप भी मानेंगे कि परंपरा से पिता का स्थान उनका सबसे बड़ा बेटा ही लेता है। किंतु मगध की जनता आपको नए राजा के रूप में देखना चाहती थी।
0: इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं अधिकारी था नहीं, पर बन गया हूँ।

और फिर समय बीतने लगा। वीर अशोक, मगध सम्राट अशोक, एक के बाद एक राज्य पर विजय पाने लगा। वो अपने राज्य का विस्तार करता चला गया। शक्ति और शस्त्रों के बल पर वो दिन पर दिन युद्धों में उलझता चला गया। और फिर एक बार जब महाराज अशोक कलिंग पर विजय पाने के लिए भयानक संग्राम कर रहे थे,

0: क्या बात है।
1: महाराज अशोक की
0: जय।
1: महाराज अशोक की
0: जय।
1: हम शत्रुओं के छक्के छुड़ा देंगे। कलिंग पर मगध का अधिकार होगा।
2: बड़े चलो वीरो, हम कलिंग का घमंड तोड़ देंगे। विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही है।

मैं मरा, माली माली माली।

0: सम्राट अशोक की जय।
1: आओ सेनापति।
0: महाराज, घमंडी कलिंग राज का अंत हुआ। मगध के सैनिकों ने कलिंग की सेना का संहार कर डाला है। आइए स्वयं अपने नेत्रों से युद्ध भूमि का दृश्य देखिए। इधर से आइए।
1: आओ चलो।

0: महाराज, इस टीले से पूरी युद्ध भूमि स्पष्ट दिखाई देती है।
1: अरे, आकाश में इतने अधिक पक्षी क्यों मंडरा रहे हैं?
0: हमारे सैनिक अपना कौशल दिखा चुके, अब गिद्ध, चील, कौवों की बारी है।
1: यहाँ से वहां तक जैसे रक्त की नदी बह रही है।
0: जी महाराज, कलिंग के 100,000 से अधिक सैनिक मारे गए।
1: इतने अधिक मनुष्य मर गए, किसने मारा इन्हें? क्या क्या मैंने, अशोक ने? हाँ, मेरी ही आज्ञा से हुआ ये नरसंहार।
0: महाराज, मगध के सैनिकों ने अत्यंत वीरता दिखाई है।
1: किस लिए बही ये रक्त की नदी?

0: क्या किया ये निर्दोष शत्रु सैनिकों ने? मेरा क्या बिगाड़ा था भला?
1: मेरे लिए क्या आज्ञा है?
0: आज्ञा नहीं सेनापति, प्रश्न, और वो भी अपने से। उत्तर किसी के पास नहीं। मैं पूछता हूं, ये युद्ध, ये विनाश, रक्तपात किस लिए? आखिर क्या नहीं था मेरे पास जो मैं पाना चाहता था? इतना खून बहाकर क्या पाया मैंने?
1: महाराज क्षमा करें, आपका चित्त ठीक नहीं, आइए लौट चले राजवैद।
0: नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे अपने से इस प्रश्न का उत्तर लेना है, इनकी मृत्यु मेरा उत्सव कैसे बनी?
1: महाराज यूं दुख न करें, युद्ध में तो ऐसा होता ही है। आपने परम वीर बाबा महाराज चंद्रगुप्त और तेजस्वी पिता महाराज बिंदुसार से अधिक वीरता दिखाई है।
0: वीरता? नहीं नहीं नहीं, ये वीरता नहीं। मैंने अपने पिता से अधिक रक्त बहाया है। मैं मृत्यु का दूत हूँ, विनाश की आंधी हूँ मैं। ये कदापि वीरता नहीं है। वीरता तो तब होती जब मैं बिना हिंसा किए युद्ध जीत पाता। हो, ये मैंने क्या किया
1: महाराज?
0: हाँ, इस कलिंग के युद्ध ने मेरी आंखें खोल दी है। ये मेरा अंतिम युद्ध है। मुझे तलवार नहीं अपितु दूसरों को क्षमा कर सकने की ताकत चाहिए। मुझे युद्ध नहीं शांति चाहिए, शांति चाहिए।

0: सम्राट अशोक, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं समाप्त। और अब श्रोताओं, आपको लिए चलेंगे हमारे अगले कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: मैदान तक खींच ही लाता है। यही जुनून आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ये जुनून किसी भी फील्ड में हो सकता है। शायद आपको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप हर रोज रियाज करते हैं, हर गाने को सीखने की कोशिश करते हैं, या शायद आपको साइंस में दिलचस्पी हो तो आप हर नए इन्वेंशन के बारे में पढ़ते हैं, यूज करते हैं। यही जुनून आपको सफल साइंटिस्ट बना सकता है।
0: हाँ, जुनून जगाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानें और उन्हें करने में आपको कैसा लगता है इसे महसूस करें। अपने सपनों को हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी सोचें, शायद वही आपका जुनून बन सकता है। हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करें। कोई चीज़ें करने में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जुनून सिर्फ उसी चीज़ से पैदा होगा जिसे करने में आपको सच्ची खुशी मिलती है।
1: हाँ, और दोस्तों याद रखिए, जुनून वो रास्ता है जो आपको सफलता और खुशी की तरफ ले जाता है। अपने जुनून को जगाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की और पहला कदम बढ़ाएं। जुनून वो आग है जो आपको जलाए रखती है। लक्ष्य तक पहुंचाने का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, जुनून आपको हार नहीं मानने देगा।
0: हाँ, और आप अपने रास्ते

0: अब इतिहास में आगे बढ़ते हैं और हमारे श्रोताओं को बता देते हैं कि आज के दिन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: 1945 में आज ही के दिन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जर्मनी का आत्मसमर्पण हुआ था।
1: और आज ही के दिन सन 1999 में बेलग्रेड स्थित चीनी दूतावास पर नाटो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया गया था।
0: आज ही के दिन 2000 में भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए।
1: और आज ही के दिन सन 2001 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड से भी बाहर हुआ। और 2004 में आज ही के दिन श्रीलंका के मुरलीधरन ने 521 विकेट लेकर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था।

0: कृति अब बातें करते हैं कि आज जो है इतिहास में किन-किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज ही के दिन 1929 में भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म हुआ था, और 1916 में भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतन तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म हुआ था।
0: और आज ही के दिन सन 1895 में गोप बंधु चौधरी, जो कि उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता थे, उनका भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1926 में जो तपन राय चौधरी, प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जन्म हुआ था। जीन हेनरी डेनेडेट, जो कि मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1828 ईस्वी में हुआ था।

0: कृति हम बातें कर रहे हैं इतिहास के बारे में, तो अपने श्रोताओं को ये भी बता दे कि आज जो है किन किन महान हस्तियों का निधन हुआ था। तो 1982 में आत्माराम रावजी देशपांडे, जो कि प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार थे, उनका निधन हुआ था। और 2013 में जियाफरुद्दीन डागर, जो कि भारत के मशहूर ध्रुपद गायक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और 1993 में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, जो कि भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका भी जो निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: और आज ही के दिन 1899 में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक वासुदेव चापेकर का निधन हुआ था। और 1927 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, दामोदर संजीवय का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। 1915 में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक भाई बाल मुकुंद का भी निधन आज ही के दिन हुआ।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: कार्यक्रम जोहार रांची में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। तो कृति, अपने श्रोताओं को मौसम के बारे में बता दिया जाए।
4: हाँ, तो चलिए अमृता, आप थोड़ा मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं, जो देखा जाए तो लगभग हर दिन बदल ही रहा है।
3: बिल्कुल, आधे समय आप देखेंगे तो धूप खिली रहेगी, और आधे समय देखेंगे तो फिर वो घनघोर
4: बारिश होती है, फिर ओला भी गिरते हैं,
3: आंधी आती है।
4: बिल्कुल, तो झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। रांची समेत राज्य में शनिवार को तूफानी हवा के साथ बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जगह पर बारिश हुई है।
3: हाँ बिल्कुल, और वहीं आपको बता दें कि अधिकांश जिलों का तापमान अभी भी सामान्य से 5 डिग्री नीचे चल रहा है। रांची का अधिकतम पारा जो है 32.6 व न्यूनतम 19.7 डिग्री रहा है। अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे व न्यूनतम पारा जो है 4 डिग्री नीचे है। राज्य में जो है मौसम का हाल तो ऐसे भी खराब ही चल रहा है कृति। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक एक टर्फ लाइन बनी है, और उड़ीसा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है, जिससे बारिश होने का पूर्वानुमान है।
4: और राज्य में अगले 4 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 9 मई को रांची समेत राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश व वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

0: तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अमृता चलिए अब हम हमारे श्रोताओं को कुछ काम की खबरें बता देते
1: हाँ,
0: हैं।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को काम की खबर जरूर बताते हैं। सबसे जरूरी खबर ये है कृति कि एसबीआई के ग्राहक अब एटीएम या डेबिट कार्ड गुम होने पर फोन कॉल के जरिए उसे ब्लॉक करा सकेंगे। एसबीआई ने टोल फ्री नंबर 1800-1234 और 1800-2100 जारी किया है। फोन कर ग्राहक मांगी गई जानकारी देकर एटीएम ब्लॉक करा सकेंगे। तो ये बहुत ही काम की खबर है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी का एटीएम जो है वो गुम हो जाता है और एटीएम गुम होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक जाने से बैंक का भी जो है समस्या जो है पहुंच जाता है।
0: और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो अब भी आप अब शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1930 या मोबाइल नंबर

0: 9771432133 जारी किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के ईमेल आईडी cyber@jhpolice.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है।
1: हाँ, और साथ ही आपको श्रोताओं ये भी बता दें कि ई पे टैक्स सेवा के तहत अब करदाता जो है RTGS और NEFT के जरिए पेमेंट गेटवे मोड से भी कर टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। पहले करदाताओं के लिए यह विकल्प मौजूद नहीं था, अब इस विकल्प के आ जाने के बाद उन्हें कर के भुगतान में आसानी होगी।
0: और किसी भी व्यक्ति के परिवार में हुए जन्म मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना होने के 30 दिनों तक निःशुल्क करवाया जा सकता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के मुताबिक परिवार में हुए प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है। तो ये थी काम की खबरें।
1: हाँ बिल्कुल, और आप सभी श्रोताओं जो हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, और आपके साथ कभी भी जैसे आपका एटीएम गुम होता है, आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर आजमाएं।
0: ये हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।

0: कृति, आज हम अपने श्रोताओं को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं?
1: तो आज हम हमारे श्रोताओं को मनाली घुमाने ले जा रहे हैं। और आप सभी को बता दें कि मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है।
0: हाँ बिल्कुल, मनाली जो है कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है।
1: गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल, आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का अलावा जो है मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बगीचों से छन कर आती सुगंधित हवाएं दिलो दिमाग को ताजगी से भर देती है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे, जो मनाली में आकर उन्होंने मनुष्य की पुनर्रचना की।
0: हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि आप मनाली में जो है कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आप जा सकते हैं हिडिंबा मंदिर, यह समुद्र तल से लगभग 1533 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे घुंघरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
1: और आप मणिकर्ण भी जा सकते हैं, यह समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गर्म पानी का झरना है ये, और कहा जाता है कि पार्वती माँ के कर्ण फूल यहाँ खो गए थे, उसके बाद से इस झरने का जल गर्म हो गया है।
0: हाँ, मनाली में बहुत सी रोमांचक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। ये जगह वेकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप सभी जाएं और घूमें और आनंद उठाएं।

0: जोहार राजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे सोहराई कला के बारे में। यह एक आदिवासी कला है। इसका प्रचलन हजारीबाग जिले के बादम क्षेत्र में आज से कई वर्ष पूर्व शुरू हुआ था।
1: हाँ, इस क्षेत्र के जो इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि बादम राजाओं ने इस कला को काफी प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से यह कला जो है गुफाओं की दीवारों से निकलकर घड़ों की दीवारों में अपना स्थान बना पाने में सफल हुआ है।
0: झारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्व सदियों से रहा है। बदलते परिवेश में कथित आधुनिकता के नाम पर लोगों का दुर्भाग्यवश इस कला के प्रति उपेक्षा भाव इसके अस्तित्व पर संकट बनकर आ खड़ा हुआ है।
1: हाँ, राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सोहराई पर्व के दौरान देसज दुधी माटी से सजे घरों की जो दीवारों पर महिलाओं के हाथों से हुनर अब बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब दुधी मही के जगह चूने ने ले ली है।
0: उस समय ऐसा कोई घर नहीं था जहां की महिलाओं इस कला से अपने घरों दीवारों को सजाना नहीं जानती हो। आज स्थिति बदल चुकी है। अब तो इसके कलाकार और इससे जानने वाले लोगों की संख्या भी गिनती में रह गई है।

0: मौसम का हाल तो हम सभी देख रहे हैं कि बदलते मौसम में जो है लोगों की तबीयत खराब हो रही है।
1: हाँ,
0: कभी ठंड हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: तो ये ठंड और गर्मी की वजह से बहुत सारी चीजों में हम लोगों के एहतियात बढ़ने की
1: आवश्यकता है। और बदलते मौसम, गर्मी से बरसात, या फिर कहें तो मिश्रित मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण, बुखार, गले में खराश और पेट से जुड़ी समस्याएं तो आम है। तो इन समस्याओं से कैसे आप बचें, उसके लिए हम हमारे श्रोताओं को कुछ प्रमुख स्वास्थ्य टिप्स दे देते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को खान पान में सावधानियां बरतनी होगी। बाहर का तला भुना या खुला खाना खाने से बचें, घर का बना हल्का और ताज़ा खाना खाएं। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और टमाटर का सेवन करें, जो कि विटामिन सी बढ़ाता है। हमेशा पानी उबालकर या फिल्टर करके पिएं। पेट के इन्फेक्शन से बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अदरक और तुलसी चाय वाली चाय या फिर काढ़ा पिए।
0: हाँ, और खान पान के साथ जो है अपनी हाइजीन पर भी ख्याल रखें। हाथ धोएं साबुन से, नियमित रूप से जो है अपने हाथ को धोएं, विशेषकर बाहर से आने के बाद। नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए कपड़े और जूते जो है पूरी तरह से सुखा कर पहने। बारिश में भीगने पर तुरंत नहाएं और गर्म कपड़े या सूखे कपड़े पहने।
1: और आपको मच्छरों से भी बचाव जरूरी है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए सोते समय यह बहुत ज़रूरी है। और कूलर, टैंक या फिर घर के आसपास पानी को ना होने दें।
0: हाँ, बिल्कुल। और साथ ही जो है श्रोताओं, आप पर्याप्त नींद लें। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी आवश्यक है। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करें। हल्का गर्म पानी पीने से गले की खराश और पेट की समस्याओं से राहत मिलेगी।
1: हाँ, और अगर आपको कभी तेज बुखार हो या फिर जोड़ों में दर्द, कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो, तो आप डॉक्टर के पास भी तुरंत जाएं।

0: प्रकृति बातें तो हमारी बहुत सारी थी और बातों का जो सिलसिला है अभी यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि हमारा जो समय है वो समाप्त हो रहा है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी के साथ हमें यानी मुझे अमृता को
1: और कृति को दे इजाजत। नमस्कार, जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से है भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणि कपूरी, लक्षनपुर से है विश्वनाथ साहू और पिपिरिया से है दुर्गाराम साहू। इन लोगों ने फरमाइश की है अकेले हम अकेले तुम फिल्म के गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अगली फरमाइश आई है गुलाम फिल्म के गाने की। इस गाने के फरमाइश भेजी है पटियाला से और इसे भेजा है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, निहारिका और वंश बत्ता ने। इस गाने को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश आई है गांधी चौक रॉपर से और इसे भेजा है हरदेव मीका, बलबिंदर बीरक, जेतेक बीरक और मीका बीरक ने। इन लोगों ने फरमाइश की है राजा हिंदुस्तानी फिल्म के गाने की। इस गाने को गाया है उदित नारायण ने, शब्दबद्ध किया है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: आपकी पसंद कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अगली फरमाइश है गोला बाजार बक्सर से, जिसे भेजा है श्रद्धानंद आर्या, अभिनंद आर्या, परमानंद आर्या, पंकज, प्रमोद, रोहित और इनके साथ है मोहित। इन लोगों ने फरमाइश की है आओ प्यार करें फिल्म के इस गाने की। इस गाने को गाया है कुमार सानू ने, शब्दबद्ध किया है सामराज ने और संगीत दिया है अधेश श्रीवास्तव ने।

इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को निधि का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ है मेरी सखी राखी।
1: नमस्कार बहनों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगी, साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रख रही होंगी।
0: हाँ राखी, आजकल तो बच्चों के स्कूल जाने का वक्त भी काफी जल्दी हो जाता है ना, मौसम में काफी बदलाव भी होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी बहनों की चुनौतियाँ जो है थोड़ी बहुत तो बढ़ी गई होंगी, क्यों?
1: हाँ हाँ निधि, जब चुनौतियाँ आती हैं तो हम थोड़ा अधिक सावधान और सजग भी तो हो जाते हैं ना। सावधानी से ही संबंधित बातें आज बतानी है बहनों आपको, इसलिए शायद निधि ने सावधानी की बात शुरू की।
0: हाँ बिल्कुल, वैसे हमें जीवन के हर एक पहलू में सावधान रहने की जरूरत है और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, है ना? तो बहनों, आज हम बातें करेंगे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिवर्ष मई में मनाया जाता है।
1: हाँ बहनों, इस अभियान का यह उद्देश्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को जो है वो घटाकर आधा कर दिया जाए।
0: बिल्कुल, और जो चोट चपेट में जो आ जाते हैं लोग, तो उसमें भी कमी आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो बहनों, सड़क सुरक्षा मानव जीवन की रक्षा करता है। इसका अर्थ है यातायात के नियमों का पालन करके मानव जीवन को सुरक्षित रखना। लापरवाही से की गई ड्राइविंग, जैसे मोबाइल का उपयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाना या तेज गति गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं।
1: हाँ हाँ, तो आइए जानते हैं सड़क सुरक्षा के कुछ नियम बहनों, और उसका महत्व भी आपको बताते चले, है ना?
0: हाँ बताओ राखी हमारी बहनों को।
1: सुरक्षा जो साधन है उसमें क्या होता है कि दोपहिया वाहनों पर हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट आपको जरूर पहनना चाहिए। यह जो है वो जोखिम को कम करता है। और ये भी हम आपको बताते चलें कि सीट बेल्ट का उपयोग भी आप हमेशा करें, ये सब कुछ आपकी ही सुरक्षा के लिए है।
0: बिल्कुल, इसमें लापरवाही ना करें। और तेज गति हादसों का मुख्य कारण है। 1% गति बढ़ाने से घातक दुर्घटना का जो जोखिम है वो 4% तक बढ़ जाता है। तो तेज गति से बचने की जरूरत है। खास करके राखी देखोगी कि युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें शौक होता है बहुत तेज गति में गाड़ी चलाने का।
1: बिल्कुल,
0: तो घर के लोगों को ये बताने की जरूरत है और इस पर कड़ी नजर भी रखें। शराब पीकर वाहन चलाना तो हम जानते ही हैं कि गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है और ये जानलेवा भी है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि अभी तुमने बताया विनेदे कि मोबाइल का उपयोग करते हुए लोग गाड़ी चलाते हैं, ये भी गलत है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि पैदल यात्री जो हैं वो सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग भी करें, और बच्चों को भी सड़कों से दूर रखें या फिर अपने साथ उंगली पकड़कर उन्हें सड़क पार करवाएं।
0: हाँ, बहनों बिल्कुल, तो अगर हम सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे तो हम हादसों को बहुत कम कर सकते हैं,
1: क्योंकि जीवन एकदम अनमोल है बहनों, इस बात का ध्यान रखें। और जीवन बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत प्यार भरा है, और जीवन
0: की रक्षा हमें ही करनी है, पल पल करनी है। तो पल पल हम रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम सावधान भी रहें। तो बहनों आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है। और बहनों, हमें पता है कि आप अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से जी रही हैं, और बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर से आपका अपने कार्यक्रम में। हम दो सखियां आपके साथ हैं, राखी और निधि।
1: और बहनों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है भेंट वार्ता। आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा, ये विषय है आज का। हमारे आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, और इनसे बातें कर रही हैं राखी शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
2: बहनों, आकाशवाणी आज जून को अपने 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस सुरीली यात्रा के गौरवपूर्ण अनुभव से हमारे श्रोतागण अभिभूत हैं। तो आइए आज अपने कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं हम, और साझा करते हैं कुछ विशेष अनुभव। आज के हमारे अतिथि हैं हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, व्यंगकार, आलोचक और सेवा निवृत्त प्राध्यापक राखी विश्वविद्यालय, डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: धन्यवाद।
2: आकाशवाणी रांची से आपका गहरा जुड़ाव रहा है, और आकाशवाणी से ही कहें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं।
3: 90 वर्षों को तो मैं कैसे समझ पाऊँ, लेकिन 70 वर्ष तो करीब इसको याद ही है। रांची के आकाशवाणी केंद्र से सबसे मैं जुड़ा, जब रेडियो में ऐसे स्टेशन भी खोल रहे थे, यहाँ से आवाज आती थी, हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग, आकाशवाणी रांची। तब से मेरा जुड़ाव रहा है आकाशवाणी रांची के साथ। इस केंद्र को मैंने विकसित होते हुए देखा, यहाँ के केंद्र निदेशकों को देखा है। एक मेहरोत्रा साहब पहले आए थे दिल्ली से, फिर करतार सिंह दुग्गल जैसे व्यक्ति आए थे, उन्होंने आकाशवाणी के सौजन्य से अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, आकाशवाणी रांची का।
2: जी आकाशवाणी ने समय समय पर, या हम यूँ कहें कि समय के साथ साथ, क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं?
3: एक बदलाव जो मुझको याद आता है, शुरू में लाइव प्रसारण होता था, जीवंत प्रसारण,
2: जी,
3: फिर रिकॉर्डिंग की

0: सुविधा नहीं थी। अब मान लीजिए आधे घंटे प्रसेंट है, एक कहानी पढ़ने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक कविता सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है, एक व्यंग आलेख सुनाने के लिए कोई व्यक्ति बैठा है। अब तीनों व्यक्तियों को मौन साधे रहना होगा जब तक कि पूरा पूरे चंद का प्रसारण समाप्त न हो जाए। आज रिकॉर्डिंग की सुविधा है, आप आगे सुनिए, वो रिकॉर्डेड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुविधा तो मिली ही है। शुरू में थोड़ी कठिनाई होती थी, मुझको याद है आधे घंटे का चंक था। हम लोगों को कहा गया था कि आपको निवृत्त होना है, निवृत्त हो लीजिए, खांस लीजिए, थूक लीजिए, आधे घंटे तक फिर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। तो वो कहानी पढ़ रहा है, मुझको कविता सुनानी है, लेकिन चुप मौन साधे रहना है। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ बड़ा आराम हो गया। एक अंतर तो ही दिखता है
1: जी।
0: हाँ,
1: आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारतीय संगीत और साहित्य के प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है।
0: अरे बात बहुत अविस्मरणीय है
1: जी।
0: बड़े से बड़े साहित्यकार, सारे नाम इसको याद नहीं आ रहे हैं, आकाशवाणी ने हम लोगों के कानों में को उनकी ध्वनि से तृप्त कराया। अब सारे नाम पूरे दिमाग में आ नहीं रहे हैं, लेकिन देश के मूर्धन्य साहित्यकार, उनकी ध्वनियां हमारे कानों में पड़ी हैं आकाशवाणी के माध्यम से। बहुत बड़ी बात है। संगीत के क्षेत्र में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा योगदान है। देश की विरल विभूतियों को, जैसे मुझको याद है बहुत पहले की बात है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, उनका भाषण मैंने आकाशवाणी पर सुना है। तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है आकाशवाणी का इस क्षेत्र में। और फिर बाद में जो जीवंत प्रसारण हुए, जैसे आकाशवाणी केंद्र रांची में करतार सिंह गूगल साहब जब आए थे, तो उन्होंने अखिल भारतीय उर्दू मुशायरा करवाया आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष। अब सोचिए उसमें सदारत कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे चिराग गोरखपुरी, अल्पायु हुए एक कवि सलाम मसीह शहरी साहब, वो आए हुए थे, मजाल साहब आए हुए थे। क्या कहूँ मैंने, आप समझिए कि कितना प्रभावी था उनका पाठ। सलाम मछली शहरी ने जो कुछ सुनाया था सन 1960 में मैंने सुना था, और आज भी वो पंक्तियां मेरी स्मृति में अमर है। गुलसी आकाशवाणी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। कहाँ अब ये आवाजें सुनने को हमको, अब तो ये है भी नहीं, ये लोग तो इतिहास हो गए, लेकिन इस इतिहास को जुगा लिया है आर्काइव में, वो आवाजें सुरक्षित होगी आकाशवाणी के। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं नाम मुझको जैसे जैसे तलाम मछली शहरी की पंक्तियाँ आज भी मेरे जहन में गूंजती हैं, जो उनके मुख से हमने सुनी थी। यही तो है,
1: बड़ा सुखद अनुभव रहा।
0: इसमें क्या संदेह
1: जी,
0: क्या संदेह।
1: आप आकाशवाणी रांची से जुड़े हैं काफी समय से, तो क्या कोई ऐसा यादगार या विशेष अनुभव रहा है जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे।
0: बहुत सारे अनुभव। शुरू में जब बिल्कुल मैं युवा था तो एक रोमांच होता था, मुझको याद है मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय हो गए श्रवण कुमार गोस्वामी
1: जी,
0: और उस जमाने में बड़े साहित्यकारों को प्रोड्यूसर बनाकर आकाशवाणी से जोड़ा गया था। ये योजना सुमित्रानंदन पंत की है जी, तो रांची में लाल बाबू यानी राधा कृष्ण प्रोड्यूसर बनकर आकाशवाणी से जुड़े थे। गोस्वामी जी की कहानी प्रसारित हुई, मुझको लगा कि ये तो अमर हो गए मेरी कहानी। राधाकृष्ण जी ने कहा कि आपकी ये रचना मेरे पास है, मुझको अच्छी लगी है, इसका वाचन कीजिए। वही रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, लाइव वाचन होता था। वह रोमांच ही दूसरा था कि आकाशवाणी से मेरी आवाज जा रही है और लोग सुन रहे हैं, वो दौर था
1: जी। आकाशवाणी के कुछ कार्यक्रम अभी भी ऐसे हैं।

0: तीनों लोग याद करते हैं, तो कुछ पुराने लोकप्रिय कार्यक्रमों के बारे में हमें बताए।
1: एक तो है सर्वभाषा कवि सम्मेलन।
0: जी,
1: पहले तो नागपुर में सर्वभाषा कवि सम्मेलन में शामिल होने का मुझको सुख मिला था। बाद में एक दो साल पहले रांची में भी एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन हुआ, इतना आनंदकर वो था। देश भर की भाषाएं एक मंच पर, हिंदी और उर्दू के अलावा शेष कविताएं पढ़ी जाती थी मूल कवि के द्वारा, और फिर एक अनुवादक कवि होता था जो उनका अनुवाद सुनाता था।
0: जी,
1: और कुछ कविताओं के तो अनुवाद के जैसे पंजाबी है, तो वो इतनी करीब है हिंदी के कि अनुवाद न भी हो तो वो समझ में आ जाए। अब नागपुर में जो मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री से जो सुना था, तो आज भी मेरे ध्यान में तैरता है, जबकि रांची में भी ऐसा सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो चुका है। अनुवाद की कई भाषाओं के अनुवाद की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है हिंदी उर्दू के अलावा शेष भाषाओं का अनुवाद भी प्रसारित करवाते हैं। एक मूल कवि होता है, एक अनुवादक कवि होता है।
0: जी,
1: जैसे पंजाबी में नागपुर केंद्र से मैंने पंजाबी की एक युवा कवित्री को जो सुना था, वो पंक्तियाँ आज भी मेरी स्मृति में, आप ऐसे समझे कितना प्रभावी होता था यह कार्यक्रम। वो पंजाबी कवित्री ने कहा था, उसका शिक्षक था नसीहत है।
0: जी,
1: मेरी माँ ने बहुत सारी नसीहतें दी थी, कुड़िया यूँ कूद कूद कर नहीं चलती दबे पाँव चलती, कुड़िया यूँ दीदा तार तार के नहीं देखती नीची नजर देखती। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी को भी नसीहतें दी, मैंने कहा कि तुझे बहुत सारी नसीहतें मिलेंगी, उन नसीहतों का ध्यान मत देना, तेरे मन में जो आए वो करना, सामने अगर दरवाजा बंद मिले तो तोड़ कर आगे निकल जाना।
0: क्या बात है,
1: तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के में जो अंतर आ रहा है वो सुनने में अच्छा लगा, अच्छा लगता है। रांची में भी एक सर्वभाषा कवि सम्मेलन हो ही गया।
0: जी, कई नए कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी ने मंच प्रदान किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे नए कलाकारों को मंच प्रदान करने में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है?
1: कुछ तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन अब आकाशवाणी कैसे निर्णय कर सकता है कि ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, लेकिन मुझको स्मरण है, मुझको वो नाम याद है
0: जी।
1: उनको लेखक बनाने में आकाशवाणी की बड़ी भूमिका रही है। वो प्रारंभ में लिख रहे थे, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा जब आकाशवाणी से उनकी कहानियां प्रसारित हुई, उनकी कविताएं प्रसारित हुई, अच्छा लगता था। और कई नाम, अब यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई नाम मुझको याद हैं कि आकाशवाणी के इसी प्रसारण के कारण उनका मनोबल बढ़ा और वो हिंदी के अच्छे कहानीकार बन गए, और वो हिंदी के कहानीकारों में शुमार और शामिल है। यही तो है, आकाशवाणी का बड़ा योगदान है इसमें, क्या समझे
0: जी? मनोबल बढ़ा, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ,
0: सबसे बड़ी बात है कि उन्हें मंच मिला, लोगों ने सुना और फिर वो आगे बढ़े। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप के माध्यम से जन जन तक पहुँच गई, तो अपने लक्ष्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को पूरा करने के प्रयास में आकाशवाणी को और क्या विशेष करने की आवश्यकता है?
1: ठीक है, ऐप के माध्यम से उसका प्रसार बढ़ा तो है, और ठीक है, कुछ नया तो मुझको सूझ नहीं रहा है कि जो और करे वो, लेकिन अच्छा लगता है जब गांव में देहातों में जब एक विनोदी प्रसंग याद आ रहा है
0: जी।
1: जब दूरदर्शन आया, एक मेरे मित्र जो पहले आकाशवाणी में ही कार्यक्रम में अभ्यासी थे, दूरदर्शन में चले गए, वो कहते थे कि अब क्या कीजिएगा, दूरदर्शन में चूंकि चित्र सामने आता है तो किसी दर्शन में ही बैगन नीला दिख रहा है, कहा तो मजा आ रहा है, यहाँ तो जो कुछ होना है ध्वनि के माध्यम से ही होना है, लेकिन ये कला

बात मेरे जहन में आ रही है कि नई विधाएं भी जरूरत के अनुसार विकसित होती है। जैसे आकाशवाणी में केवल ध्वनि के माध्यम से बातें हम तक पहुंचनी है, ये अधिक माध्यम

0: प्रजाति ध्वनि रूपक की था आकाशवाणी के चलते ही विकसित हुई, वरना नाटक तो दृश्य माध्यम श्रव्य माध्यम है, लेकिन केवल शब्द माध्यम से भी नाटक हो सकते हैं। यह आकाशवाणी ने हमको सिखाया। अब नाम याद नहीं आ रहा, आकाशवाणी से तो एक विशेष कार्यक्रम ही हुआ करता था नाटक का, रात में शायद व्यंग नाटक होते थे, हास्य नाटक होते थे, होते थे
1: जी। बचपन में हमने सुना था सर, कुछ दांत रे दांत ऐसा कोई व्यंग नाटक था आपका, प्रसारित होता था दात रे
0: दात,
1: कुछ ऐसा था।
0: हाँ, वो मेरे जहन में आ गया था, सिमडेगा मैं उन दिनों रहता था
1: जी।
0: और एक आदमी, अब जनजातीय समुदाय के लोग सबके चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता बेचारे आदिवासी, तो एक बंगाली डॉक्टर थे, एक ही डॉक्टर थे उस समय
1: जी,
0: बहुत पहले की बात है। वो यद्यपि सरकारी अस्पताल था, वो अठानी लोगों से लेते थे आसानी। तो एक व्यक्ति आया दांत दिखाने
1: जी,
0: वो चिल्ला रहा था बाप रे बाप, दांत रे दांत, दर्द है दर्द। डॉक्टर साहब ने कहा मुंह खोलो, कहीं दांत को उखड़ाने होगा। तो भीतर सर्दी लाने के लिए चले गए, कंपाउंडर भी चला गया, सर्दी लेके आएंगे दांत उखड़े हैं। तब तक दूसरा कोई आदिवासी, अरे बाप रे बाप, सगर देह में बच्चा मुंबई गया था। तो दांत वाला जो था वो कहा हो रहा, मैं तो मुई गया, पूरा देह में सगर देह में बच्चा है। तो दांत वाला हट गया और बुखार वाले कहा कि तो तकलीफ ज्यादा है भाई, तो है पहले टिका ले। तो बुखार वाला आके बैठ गया, दांत के डॉक्टर साहब आए, मुंह बोलो। और पहले वाले का दांत जहाँ था उसी दांत को पकड़ के उन्होंने उखाड़ दिया। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जाओ जाओ ठीक हो जाएगा, खून बह रहा है, कोई बात नहीं है। तो तुम्हें कहा था ये दांत में दर्द है, बोला कि हम नहीं बाबू, मोर तो देह में बच्चा है। डॉक्टर साहब ने कहा अरे कंपाउंडर साहब कहाँ चला गया, दांत बच्चा वाला तो भाग गया हुजूर इसका तकलीफ देख के। वही मैंने दांत दांत वाला एक जमाने में नाटक लिखा था।
1: बड़े छुट्टी में अनुभव रहे हैं।
0: हाँ, मैंने बात यहाँ से शुरू हुई थी, एक नई विधा ध्वनि नाटक या ध्वनि रूपक का जन्म हुआ था। मुझको याद है साहित्य अकादमी की पत्रिका है ना, क्या नाम है, समकालीन भारतीय साहित्य
1: जी,
0: तो मैंने अपना एक ध्वनि रूपक यथावत समकालीन भारतीय साहित्य को भेज दिया था। और यह लिखा था कि इस नाटक को मैं ध्वनि रूपक के रूप में ही इसलिए भेज रहा हूँ कि यदि आमतौर पर लोग ध्वनि रूपक को रंग रूपक के रूप में बदल देते हैं, यानी ध्वनि संकेत जो है उनके लिए रंग संकेत दे दिए
1: जी,
0: और इस तरह से ध्वनि नाटक को रंग नाटक के रूप में लोग छपा लेते हैं, प्रकाशित कर लेते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि ध्वनि नाटक ऐसे लिखे जाते हैं लोग जानेंगे कैसे, यदि सारे ध्वनि नाटकों को हम लोग नाटक के रूप में बदल देंगे तो उस समय जो समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक थे उन्होंने मेरा लगभग आधे घंटे का एक ध्वनि नाटक यथावत प्रकाशित किया। समकालीन भारतीय साहित्य में मेरा ध्वनि नाटक यथावत छपा था
1: जी। तो बहुत सारे सुखद अनुभव ऐसे रहे जो आपने साझा किए हमारे श्रोताओं से। सर आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
0: क्या कहें, बिल्कुल याद आया, बताया, अच्छा लगा आपसे बातें करके, अपनी बातें लोगों से साझा करके, धन्यवाद।
2: बहनों अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, आकाशवाणी की 90 वर्षों की सुरीली यात्रा। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी और इनसे बातें कर रही थी राखी शर्मा।
3: तो बहनों ये हमारे लिए सचमुच में गौरव का क्षण है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो गए। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम ऐसे ही हमेशा हमें उत्साहित करता रहेगा। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें।

0: हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें।
1: तो राखी, अब वक्त हो चला है बहनों को अलविदा कहने का। और हाँ, बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। बहनों, अभी के लिए दें इजाजत अपनी सखियों निधि और
0: राखी को। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियाँ बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वर्फ्यू से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी

0: बताओ, है ना रोचक बात? यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
1: जी।
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना किया
1: जी।
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
1: जी।
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना किया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
1: जी।
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
1: जी। समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: উঠো জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युत्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष

की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा, अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे,

यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेह युक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।

0: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी।

0: कुत्ते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: a global footprint so that our impact on the international economy and the de-risking of the world is as impactful, as far-reaching as possible.
1: The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to suicide committed by the victims. Minister of State for External Affairs Keerthivardhan Singh has said India's approach to migration is guided by the core operational principles of protection of migrants, comprehensive governance across the migration life cycle, and strong international cooperation. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से तीन गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने मांडर प्रखंड परिसर में स्वयं सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों के बीच गेहूं प्रसंस्करण मशीन तथा मिनी राइस मिल का वितरण किया। कार्यक्रम के तहत कुल 40 प्रसंस्करण इकाइयां लाभुकों को सौंपी गईं, जबकि प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से प्रभावित 65 लाभुकों के बीच 17,24,000 रुपए की सहायता राशि भी वितरित की गई। झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर अक्टूबर नवंबर में देवघर में शुरू होगा, जिसकी जानकारी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने दी। यह पूर्वी भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल वीजा बनाने की सुविधा नहीं है। शुरुआत में यहां छोटे देशों के लिए वीजा बनेंगे और पर्यटन या पढ़ाई के लिए सिंगापुर, दुबई, मलेशिया और बैंकॉक जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही देवघर एयरपोर्ट से हैदराबाद, गुवाहाटी व सूरत के लिए सीधी उड़ान और गोड्डा से गुजरात, राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा की भी तैयारी है, जिससे क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।
3: रांची विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थी

0: की फीस वापस करेगा। कुलपति डॉ. सरोज शर्मा ने बताया कि सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण फीस वापसी की तैयारी की जा रही है।
1: हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि उन विद्यार्थियों की फी जो है जो ली गई थी उसको वापस कर दिया जाएगा और इस पे हम अगले हफ्ते प्लान कर रहे हैं कि कुछ स्लॉट हम बनाएंगे और विषयवार विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उनके पैसे जो सबमिट हुए थे उसको उनको लौटा दिया जाएगा।
0: स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सरायकेला में मां बेटी की मौत और रांची की घटनाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने अस्पतालों की नियमित निगरानी और रिक्त पदों को भरने पर जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन से जुड़े स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को भेजी गई याचिका के बाद राष्ट्रपति सचिवालय ने झारखंड सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। याचिका में खनन के कारण स्थानीय लोगों में कैंसर, त्वचा और श्वसन रोग तथा भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषण की आशंका जताई गई है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार अम्बष्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, मुफ्त इलाज और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोरी स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल हटिया आदित्यपुर एक्सप्रेस, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची मेमू तथा हटिया सांकी मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अलावा बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू ट्रेन का आंशिक समापन और प्रारंभ गोमो स्टेशन से होगा। इन ट्रेनों का गोमो हटिया गोमो के बीच परिचालन 8 और 9 मई को रद्द रहेगा। विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान ने दिल्ली सहित साहित्य अकादमी सभागार में रांची की साहित्यकार वीना श्रीवास्तव को अनिता प्रभाकर स्मृति कहानी प्रतियोगिता 2026 में प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। उनकी कहानी अब आप सुनिए को देश भर से आई 175 प्रविष्टियों में से भाषा, संवेदना, शिल्प और सामाजिक सरोकारों के आधार पर चुना गया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों और एक ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि आरोपियों के पास से छीनी गई चेन से बनाई गई 3 सोने की अंगूठियां, स्कूटी और नकद राशि बरामद की गई है।
2: स्कूटी सवार व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। घटनाओं पर रोकथाम के लिए एक दल का गठन किया गया, उनको पकड़ने का कार्य किया है। कबरी में हमको 2-3 चीजें प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कूटी जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, 15,000 रूपए कैश प्राप्त हुए हैं, 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई वो भी हमें बरामद।
0: जमशेदपुर में झारखंड क्षेत्रीय युवा संघ ने कल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर शंखनाद और माल्यार्पण के साथ होगी।
3: 487वां जन्म जयंती है, अदम्य साहस, शौर्य और देश के प्रति मर मिटने के जो जज्बा रहा है, वीर महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती शौर्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मरीन ड्राइव गोलचक्कर पे 5 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद आरती करेंगे और आरती के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 77,418 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की गिरावट के साथ 24,205 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,41,500 रुपए है, जबकि चांदी की कीमत 2,68,000 रुपए प्रति किलो है। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के दौरान मारपीट और लाइसेंसी राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। रांची पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर छीनी गई राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन बरामद की है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार। देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन के पार। बफर स्टॉक से 3 गुना अधिक भंडारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने स्वयं सहायता समूहों के बीच 40 प्रसंस्करण इकाइयों का किया वितरण। 65 लाभुकों को 17 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि की प्रदान। देवघर में नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय वीजा सेंटर। अब सिंगापुर, दुबई और मलेशिया समेत कई देशों के लिए देवघर में मिलेगी वीजा सुविधा। मुरी स्टेशन पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिए जाने के कारण आज और कल कई ट्रेनों का परिचालन रहेगा प्रभावित। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्र संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी गिरिजा देवी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गजल। पहला गजल है भूपेंद्र और मिताली सिंह की आवाज में।

दोस्तों, ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो चार दिन भी। तो आइए इस चार दिन की जिंदगी को खुशी से जी लें।

अब आप सुनिए अगला गजल तलत अजीज की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपने सुना गजल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर एक अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में दिल्ली से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सत्तागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। ताकि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय

0: इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: कास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है जय भारती। कार्यक्रम को शुरू करते हैं फना फिल्म के इस गाने से। इस गाने को गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने, शब्दबद्ध किया है प्रशून जोशी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आप सुनिए उदित नारायण की आवाज में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से ये गाना। इस गाने को शब्दबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

अब आप सुनिए बॉर्डर टू सिर्फ ये गाना। इस गाने को गाया है सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने। इसे शब्दबद्ध किया है मनोज मुंताशिर शुक्ला ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

अब आप सुनिए चक दे इंडिया फिल्म से ये गाना। इस गाने को गाया है सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मैरियाना डी क्रूज ने। शब्दबद्ध किया है जयदीप साहनी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

0: इसी गाने के साथ समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने पानी की बर्बादी रोकने को सबसे बड़ी चुनौती बताया।
2: झारखंड झरनों का प्रदेश है, पेड़ों का प्रदेश है, खनिज का प्रदेश है, सभ्यता का प्रदेश है, संस्कृति का प्रदेश है। खेत का पानी खेत में रहे, मेड़बंदी करें, वाटर सेट छोटे छोटे जो नाले हैं उनको पानी को रोका जाए, वर्षा की बूंदे जहां गिरे वहीं रोक, जल को धन मानकर रोकें, जल जीवन है, जल है तो कल है।
1: वहीं सीएम पीटीआई के महाप्रबंधक वीके पांडे ने खदानों में जल संचयन के सफल मॉडलों की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक तालमेल और आपसी समझ को बढ़ाना है। इस पहल के जरिए युवा प्रतिभागी दूसरे राज्यों का दौरा कर वहां की शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और समृद्ध विरासत का गहन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब तक 6,000 से अधिक युवा 130 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति नागरिकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस वर्ष मार्च तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 2,17,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लाभार्थियों की संख्या अब 8,96,00,000 से अधिक हो गई है। झारखंड के बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद 168 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आज रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20,000 रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया गया। 3.5 किलोमीटर की इस दौड़ को प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी की यात्रा और भविष्य के संकल्पों पर अपने विचार साझा किए।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों को पदक और विजेताओं को ट्रॉफियां प्रदान की गई। जमशेदपुर के कालीमाटी रोड पर कल देर रात भीषण आग लग गई। यहां बिक्री के लिए खड़ी 2 कारें अचानक लगी आग में जलकर पूरी तरह राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपराधी को कड़ी सजा दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजनगर निवासी 24 वर्षीय राज हिमब्रम को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा के कुछ हिस्सों में गरज और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4

0: 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मैं हूँ कृति पौराणिक। प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अंताक्षरी का खेल शुरू ही होता है म अक्षर के गाने से। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अंताक्षरी।

आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सुन रहे थे एक ही गीतकार आनंद बख्शी के लिखे चंद गीत। आकाशवाणी चायवासा है तो इस देर में आप सुनेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी लेंगे चर्चा के संबंध में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संबंध में और मनोरंजन करेंगे लोकगीत से और भेंटवार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे एक प्रगतिशील किसान से। श्रोताओं, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जो खान एवं खनिज अधिनियम को संशोधित करके 2015 में अनुसूचित क्षेत्र जहां ट्राइबल्स या अनुसूचित जनजातियां रहती हैं उन क्षेत्रों में जो कंपनियां कार्य करती हैं और कंपनियों से प्राप्त राशियों का सदुपयोग हो उन क्षेत्रों के लिए, उसके लिए इस योजना के तहत जिला में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसको आप DMFT कह सकते हैं, इसको स्थापित किया जाता है और इस DMFT में

गवर्निंग काउंसिल यानी प्रबंधन समितियों का भी गठन होता है। और मौजादा हमारे खनन कंपनियों की रॉयल्टी का 30% और जो कंपनियां नीलामी के जरिए खदाने प्राप्त करती हैं वो 10% रॉयल्टी डीएमएफटी में जमा करती है और इसका उपयोग इस गवर्निंग और प्रबंधन समिति की देखरेख में उन क्षेत्रों के लिए राशियां उपलब्ध कराई जाती है जहां प्रभावित क्षेत्र हैं। इन प्रभावित क्षेत्रों में खनन से संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र है, गांव है, उनके सर्वांगीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए इन राशियों का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन जिलों में जो पर्यावरण हो या लोगों के स्वास्थ्य हो या सामाजिक आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उन क्षेत्रों में भी इनका राशि को खर्च करने का प्रावधान है। अर्थात प्रभावित और आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस राशि का उपयोग करने का प्रावधान है। इस राशि का उपयोग स्वास्थ्य के संबंध में, पेयजल से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, समाज एवं बाल विकास से संबंधित इन तमाम योजनाओं पर इस राशि का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से इन योजनाओं का चयन जरूरी है और इन योजनाओं का प्रशासन यानी गवर्निंग बॉडी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद हैं या हमारे जो स्थानीय शासन के अभिन्न अंग मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख है, जिला परिषद के सदस्य हैं, इनके माध्यम से जिला कमेटी को सूचना जरूरी है। श्रोताओं, इसका सदुपयोग तभी संभव होगा जब ग्राम सभाओं के माध्यम से सही लोगों का, लाभुकों का चयन होना चाहिए, साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का सही रूप से निपटारा हो, सही स्थान पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो या सुनिश्चित होनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का हम सभी को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्राम सभा के माध्यम से सभी लोगों को इस राशि का सस्ता और सही तरीके से मिले, इसके लिए हमें ग्राम सभा को जागरूक करना होगा। श्रोताओं, इसे जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे लोकगीत से। इस लोकगीत के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से एक प्रगतिशील किसान से हम मुलाकात करते हैं कि किस प्रकार तसर कीट पालन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। तो आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से उनसे जानकारी लेते हैं।
1: तसर कीट पालन के माध्यम से हमारे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर भारत देश की आत्मनिर्भरता को बनाने में सहयोग दे सकते हैं। तो आज हम तसर कीट पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर एक कृषक प्रगतिशील किसान जयसिंह डांगिल जी से हम बात करेंगे, जो पिछले कई समय से खेती कर रहे हैं और एक प्रकार का वो पुश्तैनी कृषि पद्धति है तसर कीट पालन। जयसिंह डांगिल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार।
2: आपको भी जोहार।
1: तो डांगिल जी, आप लोग कब से तसर कीट पालन का काम कर रहे हैं?
2: देखिए सर, ये तो मेरा पुश्तैनी खेती रही है, तो हम लोग वही 25 साल से बिफोर हम लोग करते आ रहे हैं।
1: हाँ हाँ
2: जी जी।
1: तो ये आप लोग का तसर कीट पालन में एक तो दूसरा क्षेत्र में मूंगा रेशम है, मलबरी रेशम है, और यहाँ पर आपका तसर से संबंधित रेशम है, तो आप लोग कौन सा कीट का पालन करते हैं?
2: जी हम लोग डाबा करते हैं सर।
1: अच्छा
2: जी जी, डाबा हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग का ये पश्चिम सिंहभूम कुल्हान परमंडल क्षेत्र में डाबा की खेती होती है।
1: अच्छा, तो ये जो उसके लिए क्या पेड़ की जरूरत पड़ती है, कौन सा पौधा में खेती करते हैं?
2: आसन और अर्जुन की, और हमारे क्षेत्र जैसे ये आपका कुल्हान क्षेत्र में आसन अर्जुन भारी मात्रा में होने के कारण किसान इसी पे खेती करते हैं, और वन विभाग भी उसी वन विभाग के अंदर भी वो लोग खेती कर सकते हैं। वन विभाग को भी सरकार थ्रू ऑथराइज किया गया है।
1: अच्छा
2: जी जी।
1: अच्छा, इसमें और एक जानकारी दीजिए कि आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, क्या सरकार ने आपको मदद किया, कहीं प्रशिक्षण जो हमारे राज्य सरकार है उसका सहयोग आपको मिला है?
2: जी जी जी, हमको मिली है। जैसे 8-9 सेशन 2008-9 में हम लोग का चाईबासा रेशम तकनीकी संस्थान जो हैं, अब झारखंड सरकार, पहले तो बिहार गवर्नमेंट थे, अभी झारखंड सरकार हो गई है, तो वहाँ से हम ले रखे हैं, तो इसकी मदद हमको मिल रही है। और किसानों को हम वो चीज हम बता रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आप ट्रेनिंग भी कराते हैं?
2: ट्रेनिंग भी कराते हैं, खुद भी ट्रेनिंग भी प्रशिक्षण भी लिए हैं, किसी को आप किसान को प्रशिक्षण भी देते हैं, और खुद भी हम किसानों की तरह खेती भी करते हैं।
1: अच्छा, खेती भी करते हैं। अच्छा, ये आप बताइए, क्योंकि प्रशिक्षण आप यदि कराते हैं तो आप कहाँ कहाँ पर आपकी नियुक्ति या कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आपको भेजा गया था, और वहाँ पर आप कौन सा रेशम कीट पालन को आपने देखा है?
2: भारत वर्ष में मलवरी और गैर मलवरी बोलते हैं सर, तो मलवरी और गैर मलवरी सतोती और गैर सतोती, तो सतोती रेशम में आपका मलवरी हो गया, और मूंगा अंडी जो तूत के पत्ता में होती है आपका सतोती रेशम जो होती है, तो आपका जो तूत पेड़ में पेड़ तो नहीं, उसको इंडोर और आउटडोर है, आपका रेशम जो है जैसे बने जी आसन अर्जुन वो आउटडोर हो गया आपको, और इसके बाद अंडी और सतोती रेशम आपका वो इंडोर हो गया, उसको चारा खिलाना पड़ता है।
1: अच्छा, अर्थात जो रेशम कीट पालन जो हमारे किसान करते हैं, एक है घर के अंदर करते हैं, तो घर के अंदर करने के लिए क्या कुछ विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसमें उसको ककून बनते हैं, जहाँ चारा खिलाया जाता है, वो विशेष प्रकार का कोई तकनीकी है उसमें?
2: उसमें है जैसे हमारे दासर भारत सरकार जैसे रेशम बोर्ड है, जैसे आपका केंद्रीय रेशम बोर्ड हेड ऑफिस ऑफ

0: बेंगलोर है, तो वही हेड ऑफिस है। तो यहाँ हम लोग का झारखंड में चीटा फूटा होती है, जैसे आपका वो नेत्रहाट रेंज में हम लोग, हम नेत्रहाट में भी रहे हैं परियोजना सहायक के रूप में। तो हम लोग वहाँ भी खेती कर रहे हैं मलवरी का जो तूत रेशम बोलते हैं हम लोग।
1: अच्छा, तो वहाँ पर आप सहायक परियोजना पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, तो वहाँ पर कैसे पालते हैं, वहाँ पर पेड़ तो नहीं है, छोटा पौधा होगा?
0: पेड़ तो नहीं हो, बागवानी बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को चारा खिलाते हैं तो उसके लिए अवेलेबल सरकार थ्रू अवेलेबल है, तो वही वहाँ पर डीप बोरिंग वगैरह सरकार के थ्रू लगाई गई है। और वहाँ पर आपका लेबर वगैरह जैसे निकाई कुड़ाई, जैसे उस पत्ता निकलना चाहिए उसको पत्ता, जैसे उल्लू पास्ट क्रॉप के लिए आपका चुनते हैं दिसंबर ये हम लोग को झारखंड के लिए आपका दिसंबर के लिए चुनते हैं, दिसंबर में करते हैं, इसके बाद आपका मार्च में करते हैं।
1: अच्छा, तो शहतूत पत्ता को क्या ये जिस प्रकार जो हमारे असम त्रिपुरा तब में जो चाय की पत्ती को तोड़ा जाता है, क्या मलबरी में भी जो शहतूती रेशम है क्या इस प्रकार का पत्ती को तोड़ करके उसको खिलाना पड़ता है?
0: नहीं नहीं, वो असम वाला चाय बागान वाला तो नहीं, हम लोग को अलग है। शहतूती रेशम एक्चुअली आपका ये के लिए, आपका मलबरी के लिए है।
1: अच्छा,
0: कीड़ा अगर छोटे रहेंगे तो उसको काट करके, जैसे बच्चा छोटे रहते हैं तो उसको उसको दूध पिलाना, उसी तरह ही छोटा कीड़ा रहेगा तो उसका रस से पीता है, इसीलिए उसको हम लोग छोटा छोटा काट करके खुद ही हम प्रैक्टिकल किए हैं।
1: तो या जिस प्रकार हम लोग सब्जी में या साग को काटते हैं उस टाइप का काट के देना पड़ता है?
0: देना पड़ता है छोटा, जैसे उसका स्टेज करते हैं, जैसे फर्स्ट मोल्ड, थर्ड मोल्ड, फोर्थ मोल्ड, सेकंड मोल्ड, इसे स्टेज है लोग का, इसके बाद उसको पक्के होता है। इसके आपका मलवरी 28 से 30 दिन में आपका प्यूपा बन गोटी बन के तैयार हो जाती है।
1: तो ये जो गोटी है तसर कीट जो है उससे छोटा होता है कि ये भी उसी के बराबर गोटी बनता है उसका?
0: ये हम लोग बोलते हैं ना तेंगा अंगूठी है ना, हाँ। उसके बराबर।
1: अच्छा,
0: अंगूठा वाला?
1: हाँ,
0: गोल, उसमें भी वैरायटी है, मतलब आपका उसमें सोने जैसे दिखता है, हम लाए हैं उधर नेत्रहाट से, उसको अच्छा। माला बनाएंगे बोल करके, वो साइज का सफेद भी है, अब आपका ये पीला कलर का भी है।
1: अच्छा, कम होता है। अच्छा, तो और एक जानकारी दीजिए, यहाँ पर जो तसर कीट पालन और जो आप इसको ये कर रहे हैं रेशम में, तो तसर कीट पालन के लिए तो देखभाल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो देखभाल करने के लिए सरकार की ओर से क्या योजनाएं आप लेते हैं या किसानों को कैसा योजनाएं दिया जाता है?
0: देखभाल के लिए किसानों को सरकार थ्रू इसे नेट है, 40 का नेट, तो प्लास्टिक नेट एक को मिलती है, 20x40 वैसा लंबाई चौड़ाई नेट है, उसमें आपका आपका 10x10 या 5x5 वैसे हर क्षेत्र अलग अलग के, जैसे क्षेत्र में फील्ड में वैसा पौधे रहते हैं,
1: उसको ढका जाता है,
0: उसको 70 से 60 पौधे ढका जाता है।
1: अच्छा,
0: आपका हाइट लंबाई उसका वो फीट 10 फीट रहता है।
1: अच्छा,
0: नेट का बांस खूंटा लगा कर आप वैसे करते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेज तक, यानी कि कीड़ा हैचिंग होने के बाद थर्ड स्टेज तक आपका हवा पानी बरपच्ची पच्ची बिरनी खाने वाला, तो कीड़ा मकड़ा अधिक रहते ही तो कीड़ा ही

0: है सर। कीड़ा होने के नाते इसको बचाना बहुत, हवा पानी बारिश से भी बचाना है, इसीलिए उस लोग को, इसीलिए सरकार थ्रू उद्योग विभाग ये उपलब्ध कराती है अनुदान में।
1: अच्छा, अनुदान में देती है, तो उसमें कीड़ों को या रोग से बचाने के लिए क्या दवाएं दे सकते हैं हम उसको, और सरकार कितना सहयोग देती है उसमें भी?
0: सरकार थ्रू जैसे चिड़िया को भगाने के लिए गुलाल भी देते हैं, और जब रेशम कीट बीमार होते हैं तो उसके लिए दवा भी उपलब्ध कराते हैं। दवा उसके लिए आपका उसके लिए भी दवा उपलब्ध कराते हैं।
1: अच्छा, तो आप तो साथ में खेती भी करते हैं, दूसरों को प्रशिक्षण भी लाते हैं, तो खेती करने से आज के समय में हमारे किसान को जरूरत है, आज इधर उधर रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो एक गोटी को तैयार करने में जो समय लगता है उसको बेचने में, आप तो कितना बड़ा खेत में आपके पास कसर कीट से संबंधित पौधा है जिसमें आप खेती करते हैं?
2: श्रोताओं, अभी हम भेंटवार्ता के माध्यम से जानकारी ले रहे थे तसर कीट पालन, एक प्रगतिशील किसान से, जयसिंह डांगिल। इस भेंटवार्ता के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ है और आज के इस भेंटवार्ता के माध्यम से हमने जानकारी लिया और पुनः हम मुलाकात करेंगे नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सुरेश चंद्र से को विदा दीजिए। जोहार।

आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। साहिबगंज जिले के किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 20वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस बैठक में पिछले वर्ष के लक्ष्यों की समीक्षा और नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि एकत्रित रक्त का उपयोग जिले के थैलेसीमिया मरीजों और आपातकालीन स्थिति में भर्ती रोगियों के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

नहीं, आकाशवाणी रिया चाहे भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 MHz रुपये नहीं मतलब ना ये पिंग छः बजाया ना ते 2 मिनट होबा सिखाया ना कार्यक्रम हो कड़ा आई मिचिबेन लगे अलिंग बेटा जो कि ना महेंद्र गुया।

ela po ayum leya nrado tising e ayar pariya koruduru kuti jagar po sabin ko eta ayar do ayum chibena ling jankari riya jagar enre abu bisay mina daru ko ruwaitya ruwai ayar te doda ko chilikobu uriya en sambandra daru ko ruwai lagi da ayar te doda ko rulete ubana okon daru chilikeben ruwasanang otana enlekan daruria hisapte dora urete ba ando saningo enleka ando pantitio enleka saning dalkate enre do na abu jetsingi sumare jomina ena dora ko urti kete enre toroi ko meromi simi lekana ko hasakulo o kete enako sue sue te pere dete hobano jaise gama beta na abu जुलाई महीने पा जून है तो जुलाई रे गमा हुजू गया जब मनसून उबयान रहा एन समय रे एन दौड़ा कर रहे अब ओकोन लेकिन जो दारो जे अब ओकोन गुनगुन दारो को अखरेंगे लेकिन ना को सभी लेकिन दारो को रोवा दिए दारो जो दारो है तेरे अब लाभ लपको नमो अंडो इनकन दारो ओकोन कसुमार सगुन एन लेकिन ना को तेरे नमो अंडो अंडो गे इस पूरे इनकन दारो को मिना एंदो निया को दारु को रुआ आयारते अबो इंकन दारु को रुआते एसुरिना गरजो मेना इना मेंते आते अबो ना रुआ लगे देश पूरे टाइट को मेना गया अंडो इंकन दारु को अबो बो रुआ जमचा ना दो जुका जुका ते बो ललतना सबिन मुली पेरे दारु को इस पूरे माहौतना अंडो जाओ साल एन भुरु रे या पता को बो रुबतना एन लिकते दारु को इमेना जादो का मरांगो मर एनरदो अबो जाओ सिर में जुका जुका ते अबो को मिनंग टाइट को मिना अबो कबू चास है तन लकन ता करे दारू को नलकन जो दरूरी हो चे ओकोना सान तिया या तो सेने और जांगी पलंग सबिन लकना बायो तिया दारू को मिना इनकन दारू को बो रोजम का अंडो इन ते लाभ को बो इडी चे तिसिंगे जानकारी रे जगर दो नन मुलिरगे चबाओ तना एला जुका अंडो आयर पालिंग एला दार बेन मर अलबन अपाकन अंडो एंदो उजुबेन अयर नोपा अयुमिचिबिन लिंग दूरंग

0: देखा। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: नाबेन अयमतंते किना साड़ी इंगुल नया साड़ी इंगुल चनम एला कार्यक्रम रिया तुंडो पेरे मियन आउंडो मियन आंधी दुरेंडिंग अयमिचे बेना।

जय हिंद बच्चों, आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों आज बहुत ही खास दिन है। आपने कहीं डॉक्टर के क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में कहीं भी आपने प्लस यानी कि जोड़ चिन्ह दिया हुआ लोगो और उस पर हाथ बना हुआ आपने कहीं देखा है बच्चों? वो जो चिन्ह होता है वो लोगो होता है रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है, रेड क्रॉस आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज रेड क्रॉस दिवस है। ठीक है, कभी आप हॉस्पिटल जाइएगा या कहीं ऐसे जगह आप जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों मानवता, सेवा और मदद की भावना को बढ़ावा देना है। यह दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाने का के पीछे की एक खास वजह है। दरअसल बच्चों यह तारीख अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले जीन हेनरी ड्यूनट की जन्मतिथि भी है आज का दिन। ठीक है, हेनरी

0: बट मूल रूप से स्विट्जरलैंड के व्यापारी और समाज सेवी थे। साल 1859 में उन्होंने इटली के सोलफेरिनो युद्ध में हजारों घायल सैनिकों को दर्द से तड़पते देखा। उस समय घायल सैनिकों की देखभाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जब युद्ध होता है तो कई सारे लोग घायल हो जाते हैं, है ना। ये सब देखकर वो बहुत विचलित हुए। उन्होंने मानव सेवा के लिए एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस की जो युद्ध और आपदा के समय लोगों की मदद कर सके। आपदा क्या होता है बच्चों? जैसे बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पेड़ गिरते हैं, घर टूट जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपदा, ठीक है। इसके बाद हेनरी ड्यूनॉट ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान घायलों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार रखा। उनके इसी विचार से वर्ष 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना हुई। बाद में यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया और आज रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। यह संगठन युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य आपदाओं के समय राहत का कार्य करता है। इसके अलावा यह रक्तदान शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्य भी करता है। रेड क्रॉस का सिद्धांत है बच्चों कि हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा या देश के भेदभाव की सहायता मिलनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी सेवा मैं नहीं करूँ, इसकी सेवा मैं नहीं करूँ, वो ऐसा कुछ नहीं। सबको सेवा करना है, ठीक है, इसका उद्देश्य वही है। इस संगठन के साथ मूल सिद्धांत है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये सात मूल सिद्धांत। यही सिद्धांत इसे दुनिया के सबसे बड़े मानव सेवा संगठनों में से एक बनाते हैं। आज रेड क्रॉस दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। रेड क्रॉस हमें बताती है कि भले ही दुनिया युद्ध या आपदाओं से बटी हो, लेकिन मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। और आपको भी बच्चों किसी पर भी दबाव नहीं करना। अगर कोई मुसीबत में है, कोई घायल हो गया है, किसी को चोट आई है, तो आप इसी तरह से निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा कीजिए, ठीक है। चलिए, आज के तो हमने रेड क्रॉस दिवस पर चर्चा की, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: इन संदेशों के बाद चलिए बच्चों एक जानकारी आपको दे दूं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक

0: एक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखभाल से भी बनता है। हमारे जिले में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार की देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4000 रुपये आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय तीसरा तल्ला चैवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचनार्थ जारी। हमने जाना बच्चों मिशन वात्सल्य योजना के बारे में।
1: राहें ना अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
3: परिवार जो बनमा बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर में बोले नुकान परिस्थिति रे बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ा धरा रे आम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: वर्मा मंगलोरा को गांव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रसने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम पर
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हो तो कहाँ तो घर आए नहीं हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सा अनुता तमसा भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुर में ना ये वापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा मिलता
7: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दो बुंबई कोड़ा अन्याम हम दो कोटमुन

0: కూడా ఇప్పుడు పట్టణం కిట్టమై కూడా నేను ఉడిగిన బాగ్యాతో పోలీస్ కులో ఎన్ని లడై చలావతను ముర్రం గుయ్యంతో జై తేరు కకో ఇనుపు కో కకో నెలమీ
1: అలింగ్ మునిసురం పేత అప్పిలేతన లించి జా హురారే మినై రోజు సౌరారే మినై రో బుగిన్ రాతే ససన్ కాయ ఉవాగే బిటా ఉరేన్ కా అలి అయాను తుం తేన అప్పిలేతన.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
3: चलिए बच्चों, आज मैं आपको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाती हूँ. उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है ये लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, पहली कहानी है शेर और चूहा की. आपने कई बार सुनी होगी, आज हम लोग एक बार फिर सुनते हैं. गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था. अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया. शेर को बहुत गुस्सा आया. शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा. शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया. कुछ दिनों बाद शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया और अब जाल को तोड़ने नहीं सक रहा है, है ना? वह रस्सियों से इस कदर उलझा हुआ था कि हिल भी नहीं पा रहा था. शेर जमीन पर लेट गया और बेबस होकर दहाड़ने लगा. उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी और चूहे के कानों तक पहुंच गई. वह दौड़कर मौके पर पहुंचा और जाल के धागों को टुकड़ों में काट दिया. इस प्रकार शेर की जान बच गई. तो क्या शिक्षा मिली आप मुझे जरूर बताइए. लेकिन हर चीज की अपनी कीमत होती है, है ना? ये शिक्षा मिलती है इसे, लेकिन आपने क्या सीखा ये जरूर बताइएगा. ये एक कहानी हो गई. मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटी छोटी आज कहानियाँ सुनाऊंगी, आपको उससे क्या शिक्षा मिलती है ये जरूर बताइएगा. तो एक कहानी और सुनाते हैं, चीकू और सेब की कहानी. चीकू देखा है आपने, है ना? सेब तो देखा है, चीकू देखा है. एक दिन एक चीकू और एक सेब एक बाग में यानी कि बगीचे में बहस कर रहे थे. हर कोई यह साबित करने की दोनों, है ना, बस कर रहे थे. दोनों यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वह एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत हैं. जैसा कि उनमें से कोई भी जीतता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था. उन्होंने इस मुद्दे को खुली बहस के माध्यम से सुलझाने का फैसला किया. दो फलों के बीच फिर से शब्दों का एक जोरदार आदान प्रदान शुरू हुआ. दोनों बहस करने लगे कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, है ना? पास की झाड़ी में एक ब्लैकबेरी ने अपना सिर बाहर निकाल कर गुस्से में कहा, आपका विवाद काफ़ी लंबा चल गया है और ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी निर्णय पर पहुँचेंगे. इसलिए अपने मतभेदों को भूल जाओ. हाथ मिलाओ और फिर से दोस्त बनो। शांति से जीने का यही एकमात्र तरीका है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, है ना? समझदार लोग झगड़े से दूर रहते हैं। आपको बिना वजह का किसी से झगड़ा नहीं करना है, हाँ, आपको उलझना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है बिना वजह का, ठीक है? चलिए एक कहानी और सुनते हैं। शीर्षक क्या है? आसमान गिरा। चलिए, एक खरगोश था, वो पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर से आवाज हुई, धम करके, है ना? खरगोश चौंक कर उठ गया और बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर गया है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहीं भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर गया है, भागो भागो, जल्दी भागो, है ना? लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो आगे आपको समझ में आया उन्होंने क्या कहा? उसको भी, है ना, कि भागो भागो भागो, आसमान गिरा। अब वो भी उनके साथ भागने लगे, है ना? तो इससे आपने क्या सीखा, ये मुझे लिख के बताइएगा। हमारा पता है नन्ही दुनिया द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, और हमारा पिन नंबर है 833201। और चलिए आज के कार्यक्रम के अंत में हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

इसी गीत के साथ बच्चों आजकल अन्य दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजो दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

ये था आज का नन्ही दुनिया कार्यक्रम। FM के 101.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। 6:55 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर झारखंड भाजपा ने बधाई दी है। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। राज्य में बिजली और पानी एवं संकट को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज हजारीबाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से पेयजल सुधार के लिए मिले 12,700 करोड़ रुपए का बंदरबांट कर लिया गया है। मौके पर मौजूद सांसद मनीष जायसवाल ने भी हजारीबाग में बिजली की बदहाल स्थिति और पानी के हाहाकार पर गहरी चिंता जताई।
2: इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया। दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। जिस प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के आत्मा को जगाना चाहती है कि जो बेसिक सुविधा है बिजली पानी, जो बेसिक अधिकार है लोगों का, वो दो, इसको जगाने के लिए आज का आंदोलन कर रही है।
0: उधर रामगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने कोर्ट मोड़ से समाहरणालय तक विरोध मार्च निकाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्री सारंगी ने दावा किया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाला महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
3: गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेकर सरकार काम कर रही है समन्वय के साथ, तो निश्चित रूप से असम के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लोगों का विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ संगठन को खड़ा करेंगे और चुनाव में भी भाग लेंगे।
0: गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर समेत पूरा संताल परगना क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सांसद ने क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए पावर ग्रिड, बेहतर रेल कनेक्टिविटी और वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों से आधारभूत ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कल से देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल और अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति आज बोकारो पहुंची। समिति के अध्यक्ष और राज्य उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। डॉक्टर कौशल ने बताया कि घोटाले की जड़ें गहरी हैं और इसकी बिंदुवार जाँच की जा रही है।
5: हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है। ट्रेजरी कोड जो हमारे बेंचमार्क हैं वो ट्रेजरी कोड है, झारखंड फाइनेंशियल रूल्स हैं और पुलिस मैनुअल, ये तीन चीजें हैं। उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के समय समय पर निर्गत इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पे हम लोग एग्जामिन करके क्लियर फाइंडिंग्स पे पहुंचे।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगामी 11 और 12 मई को रांची में दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के जनजातीय छात्रों को राजधानी के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिलेगा। आज रांची में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। विश्व रेडक्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रदेशवासियों और संस्था के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन से जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस से जुड़े कार्यकर्ताओं का योगदान समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। राजधानी रांची में जल संरक्षण पर केंद्रित सुजलम झारखंड 2026 का भव्य आयोजन हुआ। जल संसाधन विभाग और सस्टेनेबल कॉमर्स फोरम के इस साझा प्रयास में विशेषज्ञों ने जल सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा की। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने बढ़ते जल संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
6: हम नई पद्धति से जिस जगह और जगह जो ये पहाड़ी इलाके में पानी का रोकने का जो टेक्निक सभी अपनाए हैं, उस टेक्निक को हम लोग लेकर के झारखंड में भी ये करेंगे। अभी हम लोग झारखंड में वीरस्टाण में नया प्रोजेक्ट है जिसमें 120 तालाब में हम लोग पानी खेत में तो देंगे ही और तालाब में ही स्टॉक करके रखेंगे।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार 14 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी। कल रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 22 से 24 मई तक रांची में अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए स्टेट लेवल कोर्स का आयोजन किया जाएगा। ईस्ट जोन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस कोर्स के लिए खिलाड़ियों के पास नेशनल चैंपियनशिप में खेलने और ऑफिशिएटिंग का काम से कम 3 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। हॉकी इंडिया ने इच्छुक उम्मीदवारों से 10 मई तक ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। झारखंड भाजपा ने दी बधाई। हजारीबाग और रामगढ़ समेत कई जिलों में बिजली पानी संकट के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। झामुमो ने भाजपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बोकारो पुलिस विभाग में हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक के वेतन घोटाले की जांच तेज। उच्च स्तरीय समिति ने की दस्तावेजों की गहन समीक्षा। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी में ओलावृष्टि की चेतावनी। और रांची में हॉकी इंडिया आयोजित करेगा स्टेट लेवल कोर्स। अंपायरों और टेक्निकल ऑफिशियल्स को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद शहर में फुटपाथ दुकानों और ठेले खोमचों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने कोर्ट रोड से डीआरएम चौक तक के फुटपाथ दुकानदारों को शहर में निर्मित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में लॉटरी के माध्यम से 117 दुकानदारों को दुकान आवंटित की गई। मेयर संजीव सिंह ने कहा कि वेंडिंग जोन में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
2: रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड तक में जितने भी साइड में जो दुकानें लग रही थी वहाँ पे जाम की समस्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा वेंडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर इन सभी लोगों को एक लॉटरी के माध्यम से दुकान वहाँ आवंटन कराया जाए और उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे 177 दुकान जो है हम लोग वहाँ पे आवंटित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सड़क भी बन रही है।
1: वहीं नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहर के कई और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां भविष्य में नए वेंडिंग जोन बनाए जा सकें।
3: एक साल से ऊपर हो चुका है लेकिन वहां पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। उसके दो रीजन थे, एक तो अप्रोच रोड नहीं थी, कहीं से भी अप्रोच नहीं रोड नहीं थी, शेड बना रखा था और शेड के कारण जो रोड जाती थी वो ब्लॉक हो रखी थी, तो वो रोड बनना चालू हो गई है जो जिला स्तर से बनवाई जा रही है और काफी चौड़ी रोड है और सामने तो ईवीएम वेयर हाउस भी है, तो इसलिए उस रोड का इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए काफी चौड़ी और काफी अच्छी रोड बनाई जा रही है अप्रोच रोड। आने वाले एक वीक के अंदर या दो वीक के अंदर जैसा भी एक बार हम अपडेट ले लेंगे वो रोड कंप्लीट हो जाएगी और इसलिए वहां पर जो एक इशू था कि कस्टमर नहीं जा पाते थे वो वहां पर जाएंगे।
1: शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीपीएल कोटे में एडमिशन की प्रक्रिया को लेकर वेबसाइट rte.dhanbad.in पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदक को संबंधित वार्ड पार्षद या पंचायत के मुखिया से अपने घर का पता सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, साथ ही घर के बाहर खींची गई जियो टैग तस्वीर लोकेशन के साथ अपलोड करनी होगी। 30 मई 2026 तक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएल कोटा में एडमिशन के लिए अभिभावक को सही जानकारी देने से संबंधित एफिडेविट भी जमा करना होगा। गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।

0: की जाएगी। केंदुआडी में गैस रिसाव की वजह से क्षतिग्रस्त हाईवे और ट्रैफिक डाइवर्जन इन दिनों राजनीति का नया केंद्र बिंदु बना हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने इस मुद्दे को लेकर कल से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कई बार इस मुद्दे को राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
1: केंदुआ, छाताटाड़, लोयाबाद, कुटकी, खोखपस, विकेता सभी हमारे सब व्यवसायी साथी लोग आए थे और सब लोगों से बातचीत हुई है। पिछले बार जो हम लोगों ने निश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया था और भ्रम फैला के जिला प्रशासन के आग्रह पर उसने हम लोग वहां से स्थगित किए थे उसको, लेकिन उसका कोई फलाफल निकला नहीं। जो एक सांकेतिक रूप में यह प्रशासन को मैसेज देने के लिए धनबाद के लाइफ लाइन जो है हमारा NH, यहाँ इससे हजारों लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है और पूरा धनबाद से लेकर के सब लोग का काफी परेशानी हो रही उससे, और 24 घंटे का अनशन पर हम बैठेंगे। उसमें हमारे जितने व्यवसायी भाई हैं सब लोग पांचों जगह के और धनबाद के लोग भी इसमें हमको सहयोग भी करेंगे।
0: विधायक के आंदोलन को स्थानीय व्यापारियों का भी साथ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सांसद समेत अन्य नेताओं ने भी इस रास्ते से आवागमन पुनर्बहाल करने को लेकर आवाज उठाई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
2: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र। अब पेश खिदमत है आज का हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। इसका आगाज सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों से। फिल्म का नाम है इंसानियत के दुश्मन।

इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हैं बराबाम बोस पाईसाई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान और उग्रसेन प्रधान, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और शाइना शर्मा।

बंदिश। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री, मानस और प्रतीक। न्यू कॉलोनी टुंगरी चाईबासा से सुशील कुमार सिंह, श्रीमती संध्या देवी, प्रियंका, काजल, कृष और किट्टू।

कभी भी, मतलब रात में नहीं, रात 11:11 तक और प्रातः 5:53 पर हम आपके बीच हाजिर हो जाते हैं। और कार्यक्रम जो है प्रातःकालीन सभा होती है 10:30 तक स्थानीय कार्यक्रम, और उसके बाद आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। और आप इस दरमियान दिन की हमारी सभा में 7:00 सुनते हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा, उससे पहले सुगम संगीत का कार्यक्रम होता है और भक्ति संगीत से तो हमारी शुरुआत होती है। पहले श्री रामचरितमानस गान, प्रादेशिक क्षमा करें मुख्य समाचार जो राष्ट्रीय समाचार हैं हिंदी और अंग्रेजी में सबसे पहले होते हैं, उसके बाद श्री रामचरितमानस गान का प्रसारण किया जाता है और फिर भक्ति संगीत समर्पण कार्यक्रम में सुगम संगीत। आप ये दैनिक कार्यक्रम है जोहार चाईबासा की तरह, और जोहार चाईबासा में स्थानीय जानकारियों के साथ फिल्म संगीत होता है। और 8:00 आप सुनते हैं समाचार प्रभात हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश न्यूज 8:15, 8:30 प्रादेशिक समाचार होते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और उसके बाद कार्यक्रम माटी की महक लोक संगीत के। इस कार्यक्रम के बाद पूर्वान्ह 9:00 आप सुनते हैं कार्यक्रम विविधा, और इसके बाद 9:30 से फिल्म संगीत होता है रसरंजन में। 10:00 एक प्रायोजित कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक, और उसके अन्य दिनों में फिल्म संगीत होता है। 10:30 से आप सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, और इस केंद्र से सांध्यकालीन सभा में 5:00 मुख्य समाचार के बाद 5:02 पर दी जाती है जानकारी, संक्षिप्त जानकारी सभा के कार्यक्रमों की। और उसके बाद 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम होता है, जिसमें सोमवार को आप सुनते हैं एक ही गायक के गाए चंद नगमे, उसके बाद मंगलवार को एक ही संगीतकार के तर्ज पर चंद गीत, एक ही गायिका बुधवार को युगल गीत यानी डुएट जो हैं वो होते हैं, गुरुवार को, शुक्रवार को एक ही गीतकार इनके लिखे चंद गीत होते हैं, जो आज आपने सुना आनंद बख्शी की रचनाओं को। और उसके बाद कार्यक्रम होता है किसान वाणी और खेती गृहस्थी, इसके बाद क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम होते हैं, होक कार्यक्रम होता है, बंगला कार्यक्रम होता है, संथाली कार्यक्रम 6:30, विविधा कार्यक्रम भी होते हैं 6:30, और 7:00 प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। उसके बाद होता है ज़िले में आजकल का प्रसारण, और तदंतर आपकी पसंद कार्यक्रम, जिसमें आज तकनीकी व्यवधान के लिए हम खेद प्रकाश करते हैं, आपसे क्षमा चाहते हैं। और कार्यक्रम संबंधी जानकारी में हम आपको बताते चलें कि प्रतिदिन 8:00 आप सुनते हैं हमारा रजनीगंधा कार्यक्रम, और उसके बाद समाचार संध्या का प्रसारण होता है, और 9:45 इस कार्यक्रम के बाद न्यूज 8:09 रात्रि 9:00, 9:15 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, और इस केंद्र से रात्रि 10:00 से गज़लों का हमारा कार्यक्रम होता है महफिल, और उसके बाद कार्यक्रम सुरों के रंग फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, और रात्रि 11:00 आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार 11:05 पर कार्यक्रम अंग्रेजी समाचार का, और हमारी सभा संपन्न होती है

ये आ गया कार्यक्रम का अगला नगमा, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं और इसे हमने लिया है फिल्म आशिकी से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं ग्राम बहादुरी से कैलाश कुदादा, नारायण, कृष्णा, मोहन, बसंत और ज्योति कुदादा। धमतरी छत्तीसगढ़ से लिखते हैं संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी और शानू ध्रुवंशी। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेध दामोदर।

तोहफा। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार से। सुनना चाहते हैं चाईबासा से मधु लकड़ा, नताशा बेबी, भोलाराम मधुर, जीवन विश्वकर्मा, विनोद कुमार पवन और श्रीमती मीना पवन। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत और पप्पी भाटिया।

अब ये सुनते हैं फिल्म सड़क का ये नगमा, आवाज़ कुमार सानू की। सुनना चाहते हैं बंगला टांड चगर्दपुर से अमीन अहमद अंसारी, शहबाज बेगम, अकबरी बेगम, मोहम्मद रफीक अंसारी और यास्मीन बेगम। जगराओं से सुनील पाठक, श्रीमती कमल पाठक, दीपिका, आशीष गब्या और जयपाल।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोर आ को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हतो तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
5: ये तुम बुरम सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिनाज यापा मैं रियल तपा मैं रियल वाह बेटा मिका
6: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा और पटन पटन तुम कितने कोड़ा मिनिमल बुरी ने बागिया तो कि दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो उन्हें लड़ाई चलाओ तो मैं दुर्रम गया तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरेन का
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा

0: को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर
1: कार्यक्रम रजनीगंधा में सबसे पहले ये नगमा सुनते हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम और गुलकारा हैं आशा भोसले। इसे सुनना चाहते हैं दलाई कला से लक्ष्मण सोए, आयुष, सोनू, गीता, सरिता, सारिका, हारिका, तनुजा और भीमी सोए। पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरमानी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती, डोबरो, साजन, सिद्धेश्वर, पारापुर और कुशल मुंडरी।

कभी खुशी कभी गम, यह सुनकर शीर्षक गीत आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। सुनना चाहते हैं ब्रानीम जी, चाहे वह

से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मित्रुरंजन, राजीव, मौलिक, अमित, सुमित और शुभम, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योत, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर।

अब आइए सुनते हैं फिल्म फर्ज का ये नगमा, आशा भोसले और मुकेश से। सुनना चाहते हैं सब्जी मंडी बुलडाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, शहबाज और आसिफ पेंटर। कोंडाकाटा से नसीम मैली, सावन मैली, रॉकी, कविता, हर्षमणि, पार्वती और सुहानी माली।

कार्यक्रम रजनीगंधा में ये आ गया। फिल्म कुदरत का नगमा, आवाज किशोर साहब की, सुनना चाहते हैं। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामरे, वैभव, विशाल, विपुल और भव्य कामरे, महुलिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, आयुष और भाई नंदू महतो।

जीवन मृत्यु। अब आइए सुनते हैं सुन का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी से। सुनना चाहते हैं अमला टोला चायवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक और अक्षत प्रसाद। अमजोरा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, शिवांश गोप, प्रेम, कपिल, संगीता, लिपि और दीपाली गोप।

अब आइए सुनते हैं फिल्म उपकार का नगमा। फनकार हैं मन्ना डे। सुनना चाहते हैं गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। और इसके अलावे ये खत है अमरावती से कमरुल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा और सालिया शोएब अली खान का।

तेजाब। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत नितिन मुकेश और अलका याग्निक से। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं न्यू कॉलोनी नीमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना, खुशबू खुशी और अभिषेक। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और अदीबा।

शान। अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की। सुनना चाहते हैं मोहाली से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू जाजोरिया, और लच्छनपुर से जीवन लाल, रजक, सरोजनी और राम जी।

इस गीत के साथ ही समाप्त हुआ जाता है आज का रजनीगंधा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। कीजिए थोड़ा इंतज़ार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए मत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके

0: और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत

0: स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर 94 रुपए और

0: 48 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसी के आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। स्टेज टू एक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई।

25 में सहूलत फराहम करेंगे, जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने की तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस जीएस कुलकर्णी और अद्वे सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी की और कहा कि यह कानून खवातीन के कौमी कमीशन एनसीडब्ल्यू ने संगीन जंसी जराइम के मामलात में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन पेरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत

0: Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashree Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, वर्षों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
2: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, 4 बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
2: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया. एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों, शैव दोनों मिलकर किया है. तो इसका

0: फिर बात दिल्ली तक पहुंच। और सभी अब उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा। उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई देवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूँ, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा। ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से, वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहाँ शांति होगी या नहीं होगा, वहाँ युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहाँ देश देशावर से लोग जाते हैं। तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा। मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं,
1: रीसेंट टाइम्स वाज यू लाइक राइटली मेंशनड गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग आवर हेरिटेज ग्लोबली through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilizational on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting that the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Char Dham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back

0: a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time. So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food, you know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call. This adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं, बार बार इसका प्रस्तुतीकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
1: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुँचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। सब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं, सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, to endure, and most importantly, to move forward with confidence. So on that very interesting note, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. So that's it from us, listeners, on this program. You can also

0: मीडियम वेव 546
1: FM की 101.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईवासा केंद्र। पेश खिदमत है गजलों का हमारा कार्यक्रम महफिल। इसमें आज के फनकार हैं चंदन दास।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम सुनो के रंग। यह आकाशवाणी चाईवासा है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के

0: उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विद्या राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर शुभेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
3: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
2: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make